0: जिनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और सक्रिय ध्यान, जिसे कहा जाता है एक्टिव मेडिटेशन, उस पर जोर दिया। वे पारंपरिक धर्मों और रूढ़ियों के आलोचक थे और लोगों को आत्म जागरूकता, वर्तमान में जीने और निर्भीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। ओशो के बारे में कुछ खास बातें। उनका प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में हुआ था। नाम उन्हें आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और अंततः ओशो के नाम से जाना गया। शिक्षा और पेशा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और जबलपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। दर्शन। ओशो ने जीवन को उत्सव की तरह जीने, पुरानी परंपराओं को छोड़ने और स्व अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित किया। वे ओशो निसर्गा और ओशो मेडिटेशन रिसोर्ट जैसे ध्यान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ध्यान विधियां। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों के लिए डायनेमिक ध्यान यानी डायनेमिक मेडिटेशन जैसी सक्रिय ध्यान विधियां विकसित की, जो तनाव से मुक्ति में मदद करती हैं। साहित्य। उनके प्रवचनों को हजारों किताबों में संकलित किया गया है, जो हिंदी में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति और किताबें जो बदल सकती हैं जीवन। ये है ओशो के बारे में, भगवान रजनीश के बारे में संक्षिप्त परिचय। आइए अब सुनते हैं भगवान रजनीश को, अर्थात ओशो को। Why do complications arise in human life? अर्थात मानव जीवन में उलझनें क्यों आती हैं? इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं आप क्या कहते हैं।
1: भगवान, मैं आपको वर्षों से सुन रहा हूं, लंबे अरसे से मैं आपके पास हूं। मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, पड़ोसी परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में और मेरे हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। इस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मेरे पास दो ढंग से हो सकते हो, एक तो विचार से, बुद्धि से, और एक हृदय से और भाव से। बुद्धि और विचार से अगर मेरे पास हो तो बड़ी अड़चन होगी, रोज रोज विरोधी वक्तव्य होंगे, रोज रोज तुम्हें सुलझाना पड़ेगा, फिर भी तुम सुलझाना पाओगे। बुद्धि कभी कुछ सुलझा ही नहीं पाती। जहां सीधी सीधी बात हो वहां भी बुद्धि उलझा लेती, तो मेरी बातें तो बड़ी उलझी। जहां सब साफ सुथरा हो वहां भी बुद्धि समस्याएं खड़ी कर लेती। तो मैं तो उन रास्तों की बात कर रहा हूं जो बड़े धुंधलके से भरे। एक ही रास्ते की बात हो तो भी बुद्धि विरोध खोज लेती। ये तो अनंत रास्तों की बातें, विरोध ही विरोध मिलेगा। ऐसा मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसका हजार बार खंडन न किया हो। तो यदि बुद्धि से मेरे पास हो तो दो ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओगे या बुद्धि को छोड़ दोगे, या भाग जाओगे। बुद्धि को बचानी है तो मुझे छोड़ना पड़े, मुझे बचाना है तो बुद्धि छोड़नी पड़े। और कोई सौदा और कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए बहुत से बुद्धिवादी मेरे पास आते हैं, हट जाते हैं। उनको अपनी बुद्धि ज्यादा मूल्यवान मालूम होती है, वो उनका निर्णय। उन्हें मैं बहुत बुद्धिमान नहीं कहता, क्योंकि वे उसी बुद्धि को पकड़ रहे हैं जिस बुद्धि से कुछ भी नहीं पाया। इधर मैंने एक मौका दिया था निर्बुद्धि होने का, एक द्वार खोला था, अनजान अपरिचित। हिम्मत होती और दो कदम चल लेते तो कुछ पा जाते, कोई झलक मिलती, कोई जीवन का स्वाद उतरता। लेकिन घबरा के उन्होंने अपनी बुद्धि की पोटली बांध ली, भाग खड़े हुए। उसी को बचा लिया जिसके सहारे कुछ भी नहीं पाया था, इसलिए मैं उन्हें बहुत बुद्धिमान नहीं कहता। जो सच में बुद्धिमान है उन्हें मेरी बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ेंगे, तो भी मेरी बातों का रस विरोधाभासों के बावजूद उनके हृदय को आंदोलित करता रहेगा। एक ना एक दिन हिम्मत करके वे अंधेरे में मेरे साथ कदम उठा के देखेंगे, उसी दिन उनके भीतर क्रांति हो जाएगी। उनकी चेतना की धारा बुद्धि से छिटक के हृदय के मार्ग पर बहने लगेगी, वही एकमात्र क्रांति है। तो जो बुद्धि से मेरे पास आए हैं, या तो रुकना है तो बुद्धि खोनी पड़ेगी, वही मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि बचानी है तो मुझे खोना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मर्जी। दूसरा जो वर्ग है, जो हृदय के कारण मेरे पास आया है, जो मुझे सुनकर नहीं, मुझे सोचकर नहीं, मुझे देखकर, मुझे अनुभव कर मेरे पास आया है, जिसने धीरे धीरे मेरे साथ एक प्रेम का नाता बनाया है, वो नाता बौद्धिक नहीं। उस नाते में मैं क्या कहता हूं कुछ लेना देना नहीं, मेरी मान्यताएं क्या हैं उनका कोई विचार नहीं, मैं क्या हूं वही मूल्यवान है। उनके ऊपर मैं कितने ही विरोधी वक्तव्य देता चला जाऊं कोई अंतर न पड़ेगा। उन्होंने अपने भीतर से जो मेरा साथ जोड़ा है वो अविरोध का है, हृदय का है। बुद्धि सोचती है कौन सी बात ठीक कौन सी बात गलत, बुद्धि सोचती है कौन सी बात किस बात के विपरीत पड़ रही है, बुद्धि सोचती है कल मैंने क्या कहा था आज मैं क्या कह रहा हूं। बुद्धि हिसाब रखती है। हृदय तो क्षण क्षण जीता है, अतीत को जोड़ के नहीं चलता। मैंने कल क्या कहा था उससे प्रयोजन नहीं, मैं कल क्या था उससे प्रयोजन, और जो मैं कल था वही मैं आज हूं। मेरे वक्तव्य बदलते जाएं, मेरे शब्द बदलते जाएं, मेरा शून्य वही का वही है। कभी मैंने तुमसे मंदिर में जाके प्रार्थना करने को कहा है, कभी सब मूर्तियों को छोड़कर त्याग कर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है, कभी भगवान के रस में डूबकर नाचने को कहा है, मदमस्त होने को कहा है, कभी भगवान है ही नहीं सब सहारे छोड़ देने को, आत्मखोज के लिए कहा। स्वभावतः ये वक्तव्य विरोधी है, लेकिन इन सब विरोधों के भीतर मैं हूं। जिसने तुमसे पूजा के लिए कहा था उसी ने तुमसे पूजा छोड़ने को कहा है, और जिस लिए तुमसे पूजा करने को कहा था उसी लिए तुमको पूजा छोड़ने को कहा है। मैं वही हूं और मेरा प्रयोजन वही है। अगर तुमने प्रेम से मुझसे संबंध जोड़ा तो तुम देख पाओगे, तुम्हें यह स्पष्ट होगा, तब तुम जन्मों जन्मों मेरे साथ रहो और तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ना उठेगा। ये शुभ है, ये महिमापूर्ण है। प्रेम ने कभी कोई प्रश्न जाना ही नहीं। हाँ, कभी जिज्ञासा उठ सकती है, जिज्ञासा बड़ी और बात है, इस फर्क को भी ख्याल में ले लेना चाहिए। प्रश्न तो उठता है तुम्हारी जानकारी से, तुम कुछ जानते हो उससे प्रश्न खड़ा होता है। जिज्ञासा उठती है अज्ञान से, तुम नहीं जानते इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। तुमने वेद पढ़ा, फिर मैंने कुछ कहा, और अगर तुमने जो वेद में पढ़ा है उसके विपरीत पढ़ा तो प्रश्न उठेगा। तुमने गीता पढ़ी और मैंने कुछ कहा और तुम्हारी पढ़ी गई गीता से मेल न खाया तो प्रश्न उठेगा। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान से उठता है, तुम्हारी सूचना से, जानकारी से उठता है। प्रश्न का केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारा ज्ञान डगमगाया, तुम उसे स्थिर करना चाहते हो, तुम बेचैनी में पड़ गए, असुरक्षित हो गए, सब साफ सुथरा मालूम होता था, भ्रम खड़ा हो गया, मैंने कुछ कहा उसने तुम्हें डमाडोल किया, तुम स्थिर होना चाहते हो, तुम प्रश्न पूछते हो इस पार या उस पार। या तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही गलत सिद्ध कर दूं ताकि तुम मुझे ठीक मान लो, और या मैं गलत सिद्ध हो जाऊं ताकि तुम अपनी ठीक को ठीक माने चले जाओ। प्रश्न तुम्हारे ज्ञान में बाधा पड़ने से उत्पन्न होता है, जिज्ञासा अज्ञान से पैदा होती। छोटा बच्चा पूछता है तब जिज्ञासा है, उसे कुछ पता नहीं, वो पूछता है संसार को किसने बनाया। एक हिंदू पूछता है संसार को किसने बनाया, वो जान के ही पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने बनाया, तुम भी मानते हो या नहीं, किसने बनाया संसार को। उसके प्रश्न के पीछे जानकारी खड़ी है। एक छोटा बच्चा पूछता है किसने बनाया, उसके प्रश्न के पीछे कोई जानकारी नहीं है, विराट जिज्ञासा है। वो कुछ मान के नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसके पूछने में एक निर्दोष भाव है, वो जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है, तुम जानते ही हो इसलिए पूछते हो। तो तुम जब भी पूछते हो तुम्हारा प्रश्न एक तरह का विवाद है। जिन्होंने मुझसे प्रेम किया है उनके प्रश्न तो नहीं उठेंगे, जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा सत्य की खोज पर बड़ी जरूरी है। प्रश्न विवाद करना हो, शास्त्रार्थ करना हो तो काम के, सत्य को खोजना हो तो बाधाएं। पूछा है, वर्षों से आपको सुन रहा हूं, लंबे अरसे से आपके पास हूं, इससे कोई फर्क ना पड़ेगा, तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। ये कुछ प्रेम ऐसा है कि बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं, जो घट जाए वो भी कोई प्रेम। ये चांद कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाता है, पूर्णिमा कभी आती नहीं, बस आती मालूम होती। प्रेम के रास्ते की यही खूबी है, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, पांव बढ़ते लक्ष्य उनके साथ बढ़ता, और पल को भी नहीं यह क्रम ठहरता। पांव मंजिल पर नहीं पड़ता किसी का, प्यार से प्रिय जी नहीं भरता किसी का, जिस जी भर जाए वो प्रेम नहीं, जिस जी भरे ही ना वही प्रेम है, भर भर के ना भरे। बार बार तुम लगो कि अब लबालब हुए, अब लबालब हुए, जब झांको तब पांव की अभी और जगह रह गई, अभी और भरना है। मंजिल सदा पास आती लगती है, हाथ बढ़ाया मिल जाएगी, पर पांव मंजिल पर कभी नहीं पड़ता। तुम जितनी ज्यादा देर मेरे पास रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे। समय सिकुड़ता जाएगा, प्रेम के सामने समय छोटा है, समय कैसे बीत जाता है प्रेम की घड़ी में पता नहीं चलता। तुमने कभी ख्याल किया, तुम प्रेमी के पास बैठे हो, घंटों बीत जाते हैं, ऐसा लगता है पल ही बीतते हैं। और तुम किसी दुश्मन के पास बैठे हो, पल बीतते हैं और ऐसा लगता है घड़ी मानो ठहर गई, घंटों बीत गए। दुख में समय लंबा हो जाता है, सुख में समय छोटा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं नरक अनंत है, दुख में समय लंबा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं स्वर्ग क्षणभंगुर है, सुख में समय छोटा हो जाता है, आया नहीं गया नहीं। और आनंद में तो समय परिपूर्ण शून्य हो जाता है, इसलिए आनंद को कालातीत कहा है। फिर से तुम सोचना कितने समय तुम मेरे पास रहे, बहुत थोड़ा मालूम पड़ेगा। अगर गौर से देखोगे तो शायद तिरोहित ही हो जाएगा कि रहे ही कहां, अभी आए थे, क्षण भी नहीं बीता, या क्षण कहना भी ठीक नहीं, कुछ बीतता नहीं मालूम पड़ता, कुछ ठहरा हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए तुम जितनी ज्यादा देर रह जाओगे उतना ही लगेगा कम रहे कम रहे कम रहे। ये जल कुछ ऐसा है कि पीने से प्यास बढ़ती, जिस प्रेम से प्यास बुझ जाए वो प्रेम नहीं, जिस प्रेम से प्यास अनंत होकर जलने लगे, प्रखर होकर जलने लगे, वही प्रेम प्रेम है। और वही प्रेम प्रार्थना बनेगा, और वही प्रेम तुम्हें एक दिन परमात्मा तक ले जाएगा। प्यास जब ऐसी हो जाए कि तुम मिट ही जाओ और प्यास ही बचे, बस प्यास बचे, तुम ना बचो, एक व्याकुलता बचे, एक विरह बचे, एक उत्तप्त अभीप्सा बचे, तुम खो ही जाओ, प्यासा बचे ही ना, क्योंकि प्यासे के कारण भी प्यास पूरी नहीं हो पाती। कुछ शक्ति प्यासे को मिलती, कुछ प्यास को मिलती, बट जाती। जब प्यास ही प्यास होती है और प्यासे के पास अपने को बचाने की शक्ति भी नहीं बचती, तभी प्यास प्रार्थना हो जाती, तभी प्यास परमात्मा हो जाती। यहां तुम्हें मैं प्यास ही सिखा रहा हूं, यहां तुम्हें मैं इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं ताकि तुम अनंत प्यास के मालिक हो जाओ। भरने की जल्दी थोड़ा सोचो, साधारण प्यास को आदमी मिटा लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित है, परमात्मा की प्यास को मिटा थोड़ी लेना चाहता है क्योंकि प्यास से पीड़ित थोड़ी है। इसलिए नारद कहते हैं विरहा आसक्ति, विरह में भी आसक्ति हो जाती, रस आने लगता है प्यास में भी। अगर तुम ठीक से समझो तो ऐसा कहने दो मुझे कि प्यास के कारण थोड़ी भक्त परमात्मा को मांगता है, परमात्मा को मांगता है ताकि प्यास बढ़ती जाए। परमात्मा प्यास से गौण हो जाए, भक्ति भगवान से महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि जब तक भक्ति साधन है तब तक तो तुम छुटकारा चाहोगे कि जल्दी पूरा हो, रास्ता पूरा हो, मंजिल आए। जब भक्ति साध्य हो जाती, यहां तुम्हें मैं ऐसी ही प्यास की तरफ ले चला हूं। तो कितना समय तुम रहे ये बात बड़ी सोच लेने जैसी है, ज्यादा समय रहे नहीं। ये प्रश्न पूछा है आनंद त्रिवेदी ने, माना बहुत वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं अभी क्षण भी कहां बीते, अभी अभी आए थे, अभी बैठे ही हो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई। और तुम विचारोगे तो ऐसा ही पाओगे, अगर ज्यादा देर हो गई तो उठने का वक्त करीब आ गया, जब ज्यादा देर होने लगी तो आदमी उठने की तैयारी करने लगता है। तुम और भी बैठे रहना चाहते हो, तुम रुके ही रहना चाहते हो। जब तक उठने की आकांक्षा खड़ी ना हो जाए, जब तक यहां से दूर जाने की आकांक्षा ना हो जाए, तब तक कहां देर हुई। अभी तुम उबे नहीं। बुद्धि जल्दी उब जाती, बुद्धि बड़ी छिछली है, उसमें कोई गहराई नहीं। शोरगुल बहुत है जैसा उथली नदियों में होता है, हृदय कभी उबता नहीं, बड़ा गहरा है, पता भी नहीं चलता कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है। धार बड़ी धीमी सरकती। पूछा है मैंने समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कभी कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा। शुभ है, सौभाग्यशाली हो, बड़ा मंगल सूचक है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होता सभी को, दुर्भाग्य। जिसको होता है आनंदित हो। इसका अर्थ हुआ कि एक बड़ी गहरी उपलब्धि तुम्हें हो रही, जो वक्तव्यों से नहीं डिगाई जा सकती। मैं क्या कहता हूं इसकी तुम्हें अब चिंता नहीं है। तुम्हारे सामने मैं क्या हूं यह प्रकट होने लगा। मैं किन शब्दों का उपयोग करता हूं बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे शब्दों में झांक के मेरे शून्य को देखने लगे। मैं परमात्मा के संबंध में कुछ कहूं, परमात्मा के खिलाफ कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों के पार मुझे खड़ा हुआ अनुभव कर लेते हो। तुम मेरे गीत की धुन को पहचानने लगे। मैं किस भाषा में गाता हूं कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम्हें भाषा समझ में आती है नहीं आती कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम मेरे गीत की धुन से राजी होने लगे, तुम्हारी लयबद्धता बंधने लगी। नफल सफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत वो अंदेशा और नजर का फसाद। पंडित है, मौलवी है, दार्शनिक है, विचारक है, उससे क्या लेना देना, क्योंकि यहां तो मरने की कला सिखाई जा रही और वो तो सिर्फ दृष्टि मत विचार का उपद्रव है। पंडित तो केवल शब्दों का जाल है। नफल सफी न मुल्ला से गरज है मुझको, यह दिल की मौत, धर्म तो दिल की मौत है, यहां तो मिटना है वो अंदेशा और नजर का फसाद, और वहां तो केवल दृष्टिकोण नजरिए के झगड़े। यहां तुम्हें कोई झगड़ा थोड़ी सिखा रहा हूं, यहां तो झगड़ने वाले को कैसे विसर्जित कर दो यही सिखा रहा हूं। यहां झगड़ा करने वाला कैसे विसर्जित हो जाए, अहंकार कैसे डूब जाए, बस उतनी ही बात है। और इसलिए तो सब चिकित्साओं की बात करता हूं, जिससे हो जाए चलेगा, चिकित्सा से मेरा मोह नहीं, इसे तुम समझ लो। तुम्हारी बीमारी मिटनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी मिटाने की उतनी चिंता नहीं, चिकित्सा से मोह है। मेरे एक मित्र हैं, वो होम्योपैथ, होम्योपैथी के दीवाने, एलोपैथी के दुश्मन। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस घर में बीमार होना मुश्किल है, क्योंकि बीमार हुए कि होम्योपैथी, कोई ठीक होता नहीं दिखाई पड़ता, मगर इनकी जिद है, और एलोपैथी डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। तो अपने पति से यह कहना भी संभव नहीं कि सिर में दर्द है या बुखार है, यह भी चोरी छिपे छिपाना पड़ता है, क्यों नहीं तो होम्योपैथी शुरू। मरीज से मतलब नहीं, सिद्धांत कुछ हैं जो नेचुरोपैथी के दीवाने, उन्हें कोई फिक्र नहीं। मेरे एक रिश्तेदार, उनकी पत्नी मर गई, नेचुरोपैथी में पूरे समय में मौजूद था जब ये घटना घटी। उनको कई बार समझाया कि तुम इस पत्नी को मारे डाल रहे हो, उपवास, वो कमजोर बीमार, उसको वो उपवास करवा रहे हैं। सो मैंने कहा उपवास कभी ठीक भी हो सकता है लेकिन इसकी हालत खराब है। पर वो बोले कि हालत इसीलिए खराब है कि शरीर में विषाक्त द्रव्य हो गए, टॉक्सिक, उनको निकालना पड़ेगा, उपवास से ही निकल सकते हैं। और एलोपैथी की दवा तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि उसमें तो और जहर है। सिद्धांत मजबूत, पत्नी सूखती गई। इधर मैं उनसे कहता भी कि पत्नी सूखती जा रही है, हालत उसकी खराब होती जा रही है, पर वो कहते कि जरा देखो तो उसके चेहरे पे कैसी कांति, वो पीली पड़ रही, वो उसको कांति कहते। ऐसा ही तो साधु सन्यासियों के पास लोग जुड़े रहते, उनका चेहरा पीला पड़ता जाता है और भक्त कहते हैं कैसा स्वर्ण जैसा तपश्चर्या प्रकट हो रही। दूसरा देखेगा तो उनको बीमार पाएगा, इलाज की जरूरत है। भक्त देखता तो वो कहता कैसा शुद्ध कुंदन जैसा चेहरा निकला आ रहा है, स्वर्ण प्रकट हो रहा है। नजरों में सिद्धांत छाए हो तो पीतल सोना मालूम होता है। मैंने उनसे कहा ये पत्नी मर जाएगी, न केवल उसका शरीर कमजोर हुआ, उसकी नींद भी खो गई, क्योंकि भोजन की थोड़ी मात्रा नींद के लिए जरूरी है। जब शरीर में कुछ पचाने को ना हो तो शरीर को सोने की जरूरत नहीं रह जाती। जब नींद खो गई, मैंने उनसे कहा इसकी नींद खो गई, वो कहने लगे कि ये तो हो जाता है जब आदमी शांत हो जाता है, तो ऐसा तो गीता में ही कहा है कृष्ण ने, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयम। ये पत्नी संयम को उपलब्ध हो रही है। उनको समझाना मुश्किल था, फिर पत्नी पागल भी हुई मगर वो अपनी बकवास जारी रखे। पत्नी मर भी गई लेकिन सवाल सिद्धांत का था। ध्यान रखना ऐसा ही धर्मों के जगत में चलता है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा मिले या ना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान के आश्रय ही मिलना चाहिए, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर तुम हिंदू हो तो गीता के सहारे ही मिलना चाहिए, गीता ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर परमात्मा तुमसे कहता हो कि आज मैं कुरान के द्वारा मिलने को तैयार हूं तो तुम कहोगे हम मिलने को तैयार नहीं, हम तो गीता के सहारे ही आएंगे। कहते हैं तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए वृंदावन तो उन्होंने कहा कि झुकूंगा नहीं, जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे। कृष्ण की मूर्ति थी बांसुरी लिए, अब तुलसीदास झुक सकते कहीं कृष्ण की मूर्ति के सामने बांसुरी लिए? वो तो धनुर्धारी राम के भक्त है। जब तक धनुष्वाण हाथ ना लोगे झुकूंगा नहीं, ये बात कैसी हुई? परमात्मा से कोई प्रयोजन नहीं है, तुम परमात्मा को भी अपने अनुशासन में रखना चाहते हो। तुम्हारे ढंग से आए तो झुकोगे, इसका अर्थ हुआ तुम अपने ढंग के लिए झुकोगे, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। तुम परमात्मा से कवायद करवाने को उत्सुक हो। ये कैसा अहंकार? नहीं, बुद्धि विवादी है, झगड़ेल है। यहां मैं सभी रास्तों की बातें कर रहा हूं क्योंकि मैं कहता हूं चलो गीता से न मिले छोड़ो, भी गीता से क्या लेना देना है। आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या प्रयोजन? गीता से नहीं मिले जाने दो, धम्मपद से ही चलो, धम्मपद से खोज ले। अगर होम्योपैथी काम ना आई तो एलोपैथी सही, एलोपैथी काम ना आई तो नेचुरोपैथी सही। पैथी से बंधने की जरूरत क्या है? जो पैथी से बंध गया वो तो रोगी से भी महारोगी है। एक तो बीमारी पकड़े और अब चिकित्सा ने भी पकड़ा। सभी रास्तों से लोग पहुंचे। मैं तुमसे सभी रास्तों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम सभी रास्तों पर चलो, मैं कहता हूं जब तुम्हें जो रास्ता जम जाए तुम उस पर चल पड़ना। जिनके लिए तब तक न जमा होगा उनके लिए मैं आगे बोलता चला जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरे वक्तव्यों में विरोध दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने विरोधी लोगों पर बोल रहा हूं, उनकी अभिव्यक्तियां इतनी भिन्न हैं। कहां बुद्ध, कहां क्राइस्ट, कहां कृष्ण, कहां महावीर, कहां पतंजलि, कहां तिलोपा, कहां शिव का विज्ञान भैरव, कहां लाओसु का ताओ ते किंग। इतने भिन्न लोग हैं, इतनी भिन्न सदियां, इतनी भिन्न अभिव्यक्तियां, लेकिन मेरी सारी चेष्टा तुम्हें बताने की यह है कि सबके भीतर एक की तरफ ही इशारे हैं, उंगलियां अलग अलग, चांद एक है। तो जब मैं लाओसु की उंगली पकड़ के उठाऊंगा चांद की तरफ, तो स्वभावतः वह उंगली वैसी ही नहीं होगी जैसी बुद्ध की उंगली होगी, हो ही नहीं सकती। बुद्ध की उंगली बुद्ध की उंगली है, लाओसु की उंगली लाओसु की उंगली है। तुम अगर गौर से मुझे देखते रहे तो तुम धीरे धीरे पाओगे कि उंगलियों का प्रयोजन ही नहीं है। उंगलियां किस तरफ उठाई जा रही हैं, चांद की तरफ, उस तरफ देखो, उंगलियों को भूलो। अगर तुमने चांद देखा तो मेरे वक्तव्यों में तुम्हें एक धारा बहती हुई प्रवाहित मालूम होगी, अगर उंगलियां देखी तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, तो मेरे वक्तव्य तुम्हें अलग अलग मालूम होंगे। चांद को देखना हो तो तुम्हें मुझे बड़ी प्रेम की नजर से देखना होगा। विवाद की नजर लेके तुम आए तो शब्द दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि विवाद शब्द को भी पकड़ ले तो बहुत, शब्द भी छूट जाता है। विवादी का मन इतना आतुर होता है विवाद के लिए कि वो शब्दों को भी नहीं पकड़ पाता, उनको पकड़ लेता है जिनको विवाद के काम ला सकता है, उनको छोड़ देता है जो उसके काम के नहीं। जिनसे विवाद खड़ा हो सकता है उनको पकड़ लेता है, जिनसे खड़ा नहीं हो सकता उनको भूल ही जाता है। लेकिन अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना, जो कि जीवन को देखने का अलग ही अनूठा ही ढंग है, अगर तुमने प्रेम से मुझे सुना तो तुम मेरे सारे विरोधों में एक ही संगीत को प्रवाहित होते हुए देखोगे। नदियां चाहे पूरब की तरफ जा रही हों चाहे पश्चिम की तरफ, सब सागर की तरफ जा रही। कुछ नजर आता नहीं उसके तस्वर के सिवा, हसरत दीदार ने आंखों को अंधा कर दिया। प्रेम के लिए जो आंख है, बुद्धि के लिए वही अंधापन मालूम होता है। इसलिए बुद्धिमान सदा प्रेम को अंधा कहते रहे। तुम प्रेमी से पूछो, प्रेमी बुद्धिमानों को अंधा मानता है, क्योंकि प्रेमी कुछ ऐसा देख लेता है जो बुद्धि देख ही नहीं पाती। कल एक युवा सन्यासी ने मुझसे पूछा कि जब से ध्यान कर रहा हूं तब से कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अनुभव आती हैं, कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने कल्पना तो नहीं कर ली। फूल ज्यादा रंगीन दिखाई पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं। वृक्ष ज्यादा हरे मालूम पड़ते हैं, ताजे और नहाए मालूम पड़ते हैं, कहीं मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वृक्ष तो ये वही है, न इन्होंने कोई स्नान किया है न कोई ताजगी आ गई। उस युवक की चिंता स्वाभाविक है, भीतर मन साफ हो रहा है तो बाहर भी चीजें साफ होने लगी। मैंने कहा घबराना मत, अगर डर गए और ऐसा सोच लिया और मान ली बुद्धि की बात की ये तो कल्पना का जाल है, तुमने सपने देखने शुरू कर दिए, तो जो द्वार खुलता था, जो पर्दा हटता था, रुक जाएगा। ये तो बुद्धि ने सदा ही कहा है। एक कवि को फूल में उतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटे बच्चे को सागर के तट पर कंकड़ पत्थर में सीपी शंख में इतना दिखाई पड़ता है जितना किसी को दिखाई नहीं पड़ता। कंकड़ पत्थर भर लेता है खीसे में, जो भी रंगीन मिला, माँ बाप कहे चले जाते हैं कि फेंको, बोझ हुआ जा रहा है, ये घर ले जाके क्या करोगे। बच्चा छोड़ता भी है तो भी आंख में आंसू आ जाते। ये जो बड़े बूढ़े हैं इनको अगर

0: हीरे जवाहरात होते तो ये भी भर लेते। अभी इनको ये पता ही नहीं रहा, ये भूल ही गए भाषा कि इस बच्चे को अभी कंकड़ पत्थरों में भी हीरे दिखाई पड़ते हैं। अभी हर रंगीन पत्थर कोहिनूर है, अभी इसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी, अभी साफ है। अभी इसे सीपी शंख में खजाने दिखाई पड़ते हैं। अभी इसकी बुद्धि मंद नहीं हुई, अभी प्रतिभा ताजी ताजी है, अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, अभी नजर साफ है, अभी धूल नहीं जमी, अभी अनुभव का कचरा इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन जल्दी ही बड़े बूढ़े इसे समझा देंगे कि कंकड़ पत्थर हैं, छोड़ो, और दूसरे कंकड़ पत्थरों की दौड़ पर लगा देंगे जिनमें उनको मूल्य दिखाई पड़ता है। जब तुम फिर से प्रेम में पड़ते हो तो फिर तुम्हें बच्चे की आंख मिलती, जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम्हें कवि की आंख उपलब्ध होती, तुम्हें रहस्यवादी संत की आंख उपलब्ध होती। तो अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो ही मेरे पास भी हो, ध्यान रखना, अन्यथा पास आके भी कोई पास आ पाता है। शारीरिक निकटता किसी को पास थोड़ी लाती, एक आत्मिक निकटता। फिर तुम हजारों मील दूर भी रहो तो भी पास हो, विचार बीच में न हो तो तुम पास हो, विचार बीच में हो तो तुम पास हो के भी दूर हो, और विचार बीच में ना हो तो प्रेम बहता है। विचार पत्थर की तरह रोके हुए है प्रेम को। जहां प्रेम बहता है वहां तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो प्रेम से खाली आंखों को दिखाई नहीं पड़ेंगी, और प्रेम से खाली आंखें तुम्हें अंधा कहेंगी। तुम उससे बेचैन मत होना, उनके लिए यह वक्तव्य स्वाभाविक है। बुद्धिमान तुम्हें पागल कहेंगे, सदा से उन्होंने कहा है। जब बुद्ध के पास लोग आके हजारों की संख्या में संन्यास्त होने लगे तो लोगों ने कहा पागल हो गए, इस आदमी ने लोगों को पागल किया, ये क्या है, सम्मोहित हो गए। जब महावीर के पास लोग आके संन्यास्त हुए और उन्होंने जीवन का नया ढंग लिया, नई चाल सीखी, तो लोगों ने फिर कहा कि पागल हुए। ये संसार सदा से ही, जो भीड़ का रास्ता है उससे अन्यथा जाने वालों को पागल कहता रहा है। अगर तुम में हिम्मत हो मेरे साथ चलने की तो तुम्हें यह भी हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि लोग जब पागल कहें तो हंस लेना, और जब लोग पागल कहें तो क्रोध मत करना, स्वाभाविक है। वे तुम्हें पागल नहीं कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि अगर तुम ठीक हो तो फिर हम पागल हैं क्या। वो सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं, तुम उन पर नाराज मत होना। अगर तुम नाराज हुए तो तुम उनके विचार को मजबूत कर दोगे कि निश्चित ही तुम पागल हो गए हो। तुम नाराज मत होना, तुम हंसना, तुम उन्हें विभूचन में डाल देना, तुम मुस्कुराना, तुम कहना कि ठीक कहते हो, पागल हो गए हैं लेकिन पहले से भले हो गए और पहले से ज्यादा मजे में हो गए, मगर पागल हो गए हैं ये सच है। तुम्हारे पागलपन को उनके प्रति करुणा बनने देना, क्योंकि वे परेशान हैं अपने पागलपन से, वे भी चाहते हैं कि छूट निकले, कहीं कोई द्वार दरवाजा मिले, वे कारागृह में बंद हैं। अगर तुम्हें आनंदित देखा, शांत देखा, तो तुम उन्हें भी खींच लाओगे। अगर तुम क्रोधित हुए, अगर तुम अपनी आत्मरक्षा करने लगे, तुमने कहा कि मैं पागल नहीं, अगर तुम विवाद में पड़े तो तुम उनके लिए द्वार बंद कर दोगे। यही तो वे चाहते थे कि तुम विवाद में उतर आओ। तुम मुस्कुराना, तुम उन्हें आशीर्वाद दे देना, उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना, एक फूल उनको भेंट कराना और लौट आना। तुम कोई विवाद मत करना, तो तुम उनके लिए भी रास्ता खुला रखोगे। आज नहीं कल वे भी आ सकते हैं, उनकी भी संभावना उतनी ही महान है जितनी तुम्हारी। समय समय पर पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। उन विरोधी वक्तव्यों के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में बना रहा तो ही बने रहने में कुछ सार है। अगर मैं तुम्हें तर्कयुक्त लगूं, तुम्हारे बंधे बंधाए तर्क की सीमा में बंधा हुआ लगूं, फिर तुम मुझसे राजी हो जाओ तो वो दोस्ती कुछ बहुत गहरी नहीं, वो केवल विचार का नाता है। वो नाता कभी भी टूट सकता है, मेरे विचार बदल जाएं या तुम्हारे बदल जाएं, वो टूट जाएगा। और विचार तो रोज बदलते रहते, विचार का कोई भरोसा, विचार पे भरोसा तो ऐसे है जैसे कुछ न किसी ने सागर की लहरों पर भवन बनाने की आकांक्षा की। विचार तो बड़े चंचल है। मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी न किसी का, अभी सुबह का, अभी शाम का, अभी रुदन का, अभी हंसी का। मन तो मौसम सा चंचल है। मन के सहारे अगर तुम मेरे साथ रहे तो ज्यादा देर चलना ना होगा, ये दोस्ती थोड़ी देर की रहेगी। रास्ते पर दो राहगीर मिल गए, फिर मेरा रास्ता अलग हो गया, फिर तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। मिले थोड़ी दूर को साथ चल लिए, फिर बिछुड़ गए। प्रेम ऐसी कुछ बुनियाद है कि शाश्वत हो सकता है, मृत्यु भी उसे मिटाती नहीं। जीवन तो उसे डगमगा ही नहीं सकता, मौत भी उसे नहीं डगमगा पाती। बुद्ध की मृत्यु करीब आई, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज वे विदा हो जाएंगे शरीर से। आनंद बहुत रोने चीखने लगा, लेकिन वो चकित हुआ कि बुद्ध का एक जो दूसरा शिष्य सुभूति एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा है। आनंद उससे कहा, तुम्हें खबर नहीं मिली, किसी ने बताया नहीं, भगवान आज देह छोड़ देंगे। तुम रो नहीं रहे, तुम होश में हो, तुम्हारी आंखें गीली नहीं, फिर कभी मिलन ना होगा, फिर कभी उनके ये सद्वचन सुनने को ना मिलेंगे, फिर कौन सिखाएगा ये सद्धर्म। सास्तक खोया जाता है। सुभूति ने कहा, जिस सास्ता से मेरा संबंध है उसके खोने का कोई उपाय नहीं, जिससे मेरा संबंध है उसकी मौत नहीं हो सकती। वो फिक्र मैंने पहले ही कर ली है आनंद, तूने कुछ गलत से संबंध बना लिया। विचार से मेरा कुछ लेना देना नहीं, मेरा संबंध गहरा है विचार से। हम साथ ही हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते, अलग होने का कोई उपाय नहीं। आनंद ने बुद्ध को आके कहा, बुद्ध ने कहा, सुभूति ठीक कहता है आनंद। आनंद ने कहा, मैं 40 वर्ष आपके पास रहा और मैं आपके पास ना हो पाया, क्या बाधा है? तो बुद्ध ने कहा, तू ज्यादा सोच विचार करता है, तेरा मुझसे संबंध विचार का है, तू अभी भी ध्यान में मुझसे ना जुड़ा। ये ध्यान बुद्ध का शब्द है प्रेम के लिए, कहो ध्यान कहो प्रेम।
1: अभी आप सुन रहे थे ओशो की विचार, विषय था Why do complications arise in human life? मानव जीवन में उलझने क्यों आती हैं? आशा करता हूँ इन विचारों को बहुत ही ध्यान से आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं अतीत से मुक्ति, अर्थात हर कोई अपने भीतर किसी दर्द, स्मृति या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है। जीवित बुद्ध, अर्थात जीवित बुद्ध हमारे बस में नहीं होते, उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है। स्वतंत्रता, अर्थात फ्रीडम। तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो, अर्थ तुम्हारे होंगे। ओशो के विचारों को आज भी ध्यान, आत्मविकास और जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रासंगिक माना जाता है। ऐसे विचारों को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
4: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूँ गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें, बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जनाबे अली, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं, यानी कि शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा, 120 नंबर हो जाता है 4060205, इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी लगता है कि एक मुलाकात बहुत जरूरी है तो आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कहा जाता है वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर। शारदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय और दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो हम उनसे बेझिझक मुलाकात करते हैं, और मुलाकात का जो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है, कौन है, कहाँ से है, बड़े ही खूबसूरत दोस्त है, उनसे हम बातें करेंगे, बताएंगे जरूर कि वो कौन है। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम यहां से कर रहे होते हैं, जैसे कि बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें, डॉक्टर्स की बातें, बहुत कुछ खास हम लेकर आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, जब बिंदास बातों का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होंगी और बातें होंगी स्टूडेंट्स के बारे में, बातें होंगी जिंदगी को किस तरीके से बिंदास जिया जा सकता है। तो खैर, फाइनली आज हमारे साथ हमारी एलुमनाई जुड़ रही हैं जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 पोस्ट बीएससी की आप पास आउट स्टूडेंट हैं और इनका जो कोर्स कंप्लीट हुआ 2020 में, 2020 में ये कोर्स कंप्लीट हुआ और ये अपने देश बांग्लादेश चली गई और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप वर्किंग वुमेन हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इसके बाद कुछ प्लान है इनके। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली ज्यादा इंतजार नहीं करा था, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की एलुमनाई शहजादी, वाकई बहुत ही खूबसूरत नाम है शहजादी आपका, बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच, आई एम शहजादी, आई केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू।
0: मैं भी बहुत खुश हूँ शहजादी, क्योंकि जब मैंने सुना कि शहजादी आ रही है, बांग्लादेश की शहजादी आ रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ माधवी जुड़ रही है जो कि SNSR फैकल्टी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। जब वो मुझे बता रही थी कि शहजादी आ रही है तो मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ की शहजादी है?
1: बांग्लादेश
0: की शहजादी है। तो माधवी मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: मुझे बताइए कि ये जो आपने एलुमनाई मीट के बारे में डिस्कशन किया या जो सोचा, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं?
1: सर, जैसे शारदा विश्वविद्यालय हर साल हम स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर पढ़े, एक्सपीरियंस ले, ग्लोबल एक्सपीरियंस ले। जब वो पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से जाते हैं तो हम एक एलुमनाई कनेक्ट करते हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ की जो उन्होंने जो एक ज्ञान एक गुरुकुल में जो एक्सपीरियंस किया है वो कैसे वर्ल्ड वाइड उस नॉलेज को सोसाइटी के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट ली है और शारदा विश्वविद्यालय का नाम कैसे आगे लेकर गए हैं, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शारदा
0: यूनिवर्सिटी। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तफाक रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रही हैं। शहजादी, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बातों का जो सिलसिला है लगातार आपके साथ जारी रहेगा। सो लिसनर्स कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ रही हैं शहजादी जो कि बांग्लादेश से हैं और 2018 की आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं, 2020 में इनका कोर्स यहाँ से कम्प्लीट हुआ और वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही है और आप प्रेसिडेंट क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। इनसे बहुत कुछ जानेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल कॉलेज हमें अच्छा मिल जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वहां की फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल अच्छा है, करिकुलम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। फाइनली एक दिन आता है रुखसती का, विदा होने का, उसके बाद अपना सिलसिला शुरू होता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एलुमनाई हैं शारदा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट से शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो शहजादी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस रहा शारदा यूनिवर्सिटी का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इधर का शारदा का जो है बोलती है वर्ल्ड इज हियर, मेरे को सच्ची में लगती है वर्ल्ड इज हियर, क्योंकि इधर में अगर हम इतना दूर से आया है, इधर का जो फैकल्टी है बहुत लगता नहीं है फैकल्टी है, लगता है हमारा फैमिली का मेंबर है। तो उसके हमारे साथ जितना भी इंस्पायर किया, सब कुछ में हेल्प करती है बहुत ज्यादा अच्छी से। लेकिन मैं इतना दिन मैं बहुत अच्छी से रहा इधर में, और हम जब बाहर में रहती है, माई पेरेंट्स आर फ्रॉम यूके, सो उधर में हम लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है,
0: इंडिया का
1: सीन, दिल्ली का क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। तो वो लोगों ने बोला क्राइम इधर में जाओगी कैसे रहेगी, उसको इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग था।

0: कोई भी नहीं आना चाहती थी कि हाँ इधर नहीं आएंगे. लेकिन जब मैं इधर में एडमिशन हुआ, मेरा पापा मम्मा ने देखा है, और इधर का ये सिक्योरिटी है, इतना भी क्राइम पेटल हो जाए लेकिन शारदा का जो सिक्योरिटी है, जाकार्ता जो लोग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है. तो मेरा जो फैमिली का जो कंसेप्ट था, हाँ उधर में बहुत ज्यादा क्राइम पेटल होती है, लेकिन उसको चेंज हो गया. उसको अभी वो रिस्पेक्ट करती है, हाँ बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छा जगह है, और शारदा तो बेस्ट है.
1: वाओ नाइस क्लैपिंग, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया कि इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर. और जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जब आप देखा करती थी तो लोगों के दिमाग में यही था जो कि आपने बताया कि पेरेंट्स ऐसा सोचा करते थे, आपके जानने वाले सोचा करते थे कि अगर आप इंडिया जाएंगी तो वहां इस तरीके का क्राइम होता है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए. लेकिन आपने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं. तो ये सुनकर शहजादी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है. सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा बहुत बड़ी ही खूबसूरत एलुमनाई है, और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, ये उनके खुद के विचार है. और क्या है आगे जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ. और मेरे साथ जुड़ी हुई है शहजादी मल्लिकाय फ्रॉम बांग्लादेश.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शहजादी बांग्लादेश से और आप यहां की एलुमनाई हैं, बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, 2020 की पास आउट हैं। तो शहजादी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है।
1: ओके,
0: पढ़ने पढ़ाने की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे, कैसा लगता था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज।
1: हाँ, जितना भी करिकुलम था वो तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं इधर का जो फैकल्टी है या टीचर है हमारा, वो सब कुछ लगता है वो हमको बच्चे जैसा हर टाइम हमको पास रखती है, जो भी होती है डांटती है। तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस भी आया, ये लोग बहुत डांटती है, ये लोग बहुत ज्यादा काम कराती है। लेकिन फिर बाद में स्लोली स्लोली जब मेरे को अचीवमेंट होती है तब लगता है नहीं, ये तो मम्मी जैसा ही वो करती है। तो इससे मेरे को बहुत अच्छी लगा, ये लोग बहुत हमको प्यार करती है, हमको डांटती है तो हमके भलाई के लिए डांटती है। तो इसलिए मैं जितना भी पार्टिसिपेशन हुई है इधर में, उसने इनकरेज किया, हाँ तुम इसको करो, ये करो, अगर फेल हो और विन हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस लोगी तो तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगी। तो इसने बहुत, इधर का जो भी फैकल्टी है, मेरा नर्सिंग का जो फैकल्टी में उसको हर टाइम मिस करती हूँ। इधर का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारा दीन, हमारा माधुबी मैम, वो तो मैं जब उसको पहली बार देखा यूनिवर्सिटी में, उस टाइम मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं पहले एक महीने पहले आया इधर में, फिर मैं इंटरनेशनल डिविजन में काम किया कंप्यूटर का। तो उस टाइम एक महीने के बाद ही मेरा स्टडी शुरू हुआ है नर्सिंग का, तो उसको पहले मैं देखा है हॉस्टल में, तो इतना अच्छी था, वो नहीं जानती मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ मेरा टीचर है।
0: माय गॉड, बहुत खूबसूरत इंसिडेंट हुआ आपके साथ।
1: इंसिडेंट हुआ और उतने माधवी मैम में बहुत अच्छी है, एक्चुअली के लगता है मेरा खुद का बहरा बहन है, मेरा कोई बड़ा बहन नहीं है, हम तीन ही बहन है, तो मेरे को लगता है वो मेरा बहन जैसे है, मैडम से ज्यादा बहन लगता है।
0: सो स्वीट शहजादी, बाकी आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, मैं जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को आप बयां कर रही है कि जो जो आपने फील किया, चाहे वो फैकल्टी के साथ आपके रिश्ते की बात हो, आपने जहाँ काम किया और आपको नहीं पता कि सामने वाला जो क्लाइंट है मेरे ही टीचर होने वाले हैं, उनके साथ जो संबंध रहे, रिलेशन आपके रहे, वो भी आप बयां कर रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी बातों को आप यहाँ रख रही हैं हमारे लिसनर्स के सामने। तो उसके बाद जो सिलसिला रहा, यहाँ से जो आपने सीखा, समझा, दोस्तों के बारे में आप मुझे बताइए कि यहाँ के दोस्त आपके साथ जुड़े बने, यहाँ का कल्चर आपने क्या डिफरेंट पाया?
1: एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री और इंडिया में इतना फर्क नहीं है,
0: समान
1: है, एक ही था, क्योंकि एक ही था। अगर आप हमारा जो प्राउड है, हमारा जो 1971 में जो फाइटिंग हुआ है, उसमें अगर बहुत बड़ा हेल्प योगदान है तो वो हमारा इंडिया का है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी मैम था उसके से हमने हेल्प करके हमारा देश को जीता है, तो इसका हमका बड़ा दान है इधर में। तो इंडिया का हमारा लगता नहीं है हमारा दूसरा कंट्री, लगता है हमारा घर ही है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: और उधर का जो लोग होती है, हमारा इधर का जो लोग होते हैं, सब सेम होती है, इधर का जो भी हॉस्पिटलिटी है और जितना भी लोगों को खुद अपना समझती है, उधर में भी सेम है, कोई फर्क, इतना फर्क नहीं है।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत, हम सबको अपना समझती है, क्या बात है, ये जो एक्सेंट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बारे में मेरी ऑफ एयर आपसे बात हुई थी कि ये जो एक्सेंट आ रहा है क्या बांग्लादेशियों का ऐसा है या आपका है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में शहजादी से हम जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ी हुई है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी है, आप एलुमनाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रेसिडेंट फाउंडर भी हैं आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कार्यक्रम।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: आले मेरे को भूल गए तुम, अगर कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं खुद ही बात करने लग जाते हो, मेरे को पीछे रख दिया तुमने। मेरे को ये क्या बोलते है?
0: दिल
1: हाँ दिल दुखा है मेरा, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। मतलब इतनी प्यारी शहजादी स्टूडेंट आई है, तुम खुद ही बात करने लग गए।
0: नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करा था।
1: नहीं मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराओगे शहजादी बेबी? हाय हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
1: देखो गगन ना खुद ही बात कर रहे थे, मेरे को नहीं लेकर आए थे, मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरे से बात करो ना।
2: मैं गगन से सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए।
0: देखा बहादुर, आपसे शहजादी बात कर रही है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पूछना चाहते हैं।
1: हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने एक्शन मार नहीं रहे थे, और जो तुम बोल रहे थे, क्या बांग्लादेश में ऐसे ही बोलते हैं या कहीं से बाहर से आपकी परवरिश हुई है? कौन सा देश है बताओ ना। हम
2: हाँ, मैं क्या है, मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब मेरा फादर की बिलिंग जी ने।
1: बेटे अभी भी तुम छोटे हो, कौन से बड़े हो गए?
2: आपसे तो छोटी ही हूँ।
1: आले मेरे को इतना बुजुर्ग ना बनाओ बेटा। हाँ तो अब मुद्दे की बात करो।
2: ठीक है, तो मेरा फादर ने इंजीनियर था, तो उसने सऊदी में गया था, तो उसके बाद हम लोग जो फुल फैमिली है वो उधर में शिफ्ट हो गया, तो उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। उधर के बाद मेरा फैमिली लंदन में आ गया, तो उधर का मेरा फादर को गवर्नमेंट से सब कुछ मिल गया, तो उधर में चला आया, अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग उधर में रहा। फिर मैं इंडिया में रहा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में, उधर में स्टडी किया, तो उसके बाद मैं नर्सिंग में आया। तो इसलिए मेरा एक्सेंट सब फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ एक साथ रहने के कुछ अलग हो गया।
1: अब मैं जा रहा हूँ गगन।
0: मतलब क्यों?
1: अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भ्रमण किया इन्होंने, मैं इनके सामने बैठ ही नहीं पा रहा। मतलब यूके घूम कर आई है, लंदन घूम कर आई है, और मतलब सब जगह घूम लिया इन्होंने तो।
0: हाँ ये बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत पहुंची हुई है, मतलब हर जगह का इन्होंने पानी पिया है और बहुत समझदार है।
1: हाँ मैं अब तुम ही बात कर लूँ।
0: तो खैर बहादुर को मैंने एक तरफ रख दिया शहजादी। मुझे ये तो रही बात आपकी, अलग अलग देशों में आप गई हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है समझा है, कब आपको लगा कि यार मुझे अपना कुछ करना है? जैसे आप खुद मुझे बता रही थी कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, तो इसके बारे में दिमाग में कब आइडिया आया?
2: हाँ इसमें उस टाइम में मैंने जब नर्सिंग का डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा करने के बाद मैं एक प्रोग्राम था, मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है इस दुनिया में क्या हो रही है, तो मेरे को जो नर्सिंग में आया हो, तो मैं नर्सिंग में बहुत बड़ा होना चाहती थी। तो इसलिए क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला मेरे को इधर में रेफरेंस रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसने मेरे को बोला तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती क्योंकि तुम नर्स हो, तुमको इधर में
0: का वाक्य है,
2: एक बांग्लादेश का था,
0: बांग्लादेश का,
2: हाँ तो बांग्लादेश का था, तो उसने बोला जो तुम नर्स हो तुमको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टडी वगैरह जो भी है इधर में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला आप जो स्टडी करा रही हो वो एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी के लिए कर, तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मेरे को वो सीखना था, तो उसने बोला नहीं ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो मैंने सोचा अगर कोई बांग्लादेश में, मैंने सोचा अगर उसका कॉन्फ्रेंस हो सकती है, डॉक्टर का अगर सोसाइटी है बांग्लादेश में तो नर्स का क्यों नहीं होगी, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं नर्सिंग सोसाइटी बनाऊंगी। तो मैंने मेरा जो मेरे चार फ्रेंड को बोला, उसने बोला ठीक है चलो।
0: फ्रेंड्स के नाम भी बताइए।
2: हाँ मेरा फ्रेंड का नाम है नाहिदा, दूसरा फ्रेंड का नाम है सलीम, और तीसरा फ्रेंड का नाम है आयशा। तो मैंने इन तीनों को बताया, उसको बोला कि हम लोग ये करना चाहते हैं, उसने बोला
0: दोस्तों ने मिलकर ही कंपनी।
2: हाँ उसको उसने बोला तुमको पागल हो गया, तुम ऐसे कैसे करोगे, बहुत बड़ा फाउंडेशन है ये नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, तुम साथ मेरे साथ रहना। तो उसने मेरे को हेल्प किया, हाँ सपोर्ट किया है, तो उसको सपोर्ट से मैं बनाया। मैं हर जगह में हर नर्स को पास गया, कोई नर्स मेरे को उस टाइम उतना प्लेस नहीं दिया, उसने बोला ये क्या है तुम क्या करोगी, हमको नहीं करनी है, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलते थे। तो मैंने उस टाइम सैलरी मेरे को मिलता था 20,000 रुपीज, तो उसने मैंने क्या किया, मेरा जो 5% मीन 55,000 आई कीपिंग फॉर माई गोइंग एंड कमिंग, एंड 15,000 मैंने इसमें खर्च किया। तो इसमें खर्च करके इसको थोड़ा सा बनाया, फिर मैंने हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको साथ मिला, उसको से हमारा जो सोसाइटी है उसको इनोग्रेट किया, तो बांग्लादेश का हेल्थ मिनिस्टर से हमको रजिस्ट्रेशन लिया, और ये जो क्रिटिकल केयर सोसाइटी है ये बांग्लादेश में एक ही सोसाइटी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला।
0: क्या बात है, क्लैपिंग बनती है, बहुत खूबसूरत शहजादी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। हाँ। बहुत अच्छा एक स्ट्रगल है।
2: सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसको करने के बाद मेरे को सोचा ठीक है बांग्लादेश में कर लिया, अभी मेरे को इंटरनेशनल भी इसको दिखानी है तो इसको दिखानी है तो बांग्लादेश में जितना भी हमने ऑलरेडी 500 स्टूडेंट को मैंने वर्कशॉप किया उसको सिखाया फ्री में. हमारे जो सोसाइटी है उसमें हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ दुआई लेते हैं.
0: बहुत खूबसूरत.
2: और क्या होती है, हम जितना भी हॉस्पिटल में जाती हूँ उसको हम फ्री में सबको सिखाती है, सब कुछ करते हैं, सिर्फ उसमें उसको टाइम देती है हमको, तो उस टाइम में हम सिखा देते हैं. तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 85 यूनिवर्सिटी स्कूल हॉस्पिटल में कर लिया है इससे काम. अभी 5000 नर्स है जिसको क्रिटिकल केयर के बारे में सब कुछ आती है. तो उस टाइम मैंने एक बार मैं अमीरात से नेपाल में गया. नेपाल में जाने के बाद उसको इंटरनेशनली मेरा जो लोगो है ना उसको बारे में बताऊं. जब मैं फाउंडेशन किया तब मैं गया वेबसाइट खोलने के लिए, लोगो बनाने के लिए. तो उसने बोला लोगो बनाऊंगी तो 32,000 रुपी लगेगी. मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ 20,000, तो 30,000 कैसे करेंगे. तो मैंने बोला अगर इस लोगो को बनाना सीखने में कितना लगती है. तो उसने बोला 1,000 लगती है. तो मैंने बोला ठीक है मैं सीख लूंगी 2 महीने में. तो मैंने ग्राफिक डिजाइन और इंटीरियर जो भी है उसको सीखा. उसे सीखने के बाद फिर मेरा खुद का लोगो मैंने खुद बनाया है.
0: क्या बात है, ग्रेट ग्रेट शहजादी, रियली नाइस टॉक टू यू. मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई.
2: तो उसको बनाया, उसको बनाने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल नेपाल में गया. उधर में हमारा लोगो उधर उसको जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डाला. फिर उसके बाद मैंने एमिरेट्स में गया. एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर के हमको अवार्ड रिवॉर्ड दिया उधर से, तो उधर के भी लेकर गया. फिर ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया, फिर श्रीलंका में लेकर गया. हमारा सोसाइटी को होल अभी सब जानती है. हाँ, एक अच्छा सोसाइटी है.
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं शहजादी आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए. आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपकी जो मुरादें हैं नेक मुरादें, इंशाल्लाह ठाकुर जी भगवान आपकी मुरादें पूरी करें. आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है. एक रणनीति के तहत अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आफ्टर सम टाइम वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा.
1: हाँ देखो बेटा, मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये, बहुत दूर दूर तक घूमे. लेकिन गगन एक बात कहना चाहता हूँ.
0: हाँ?
1: कान लाओ, ये मैडम कह रही है कि हम दुआएं लेते हैं. पैसा
0: मतलब
1: पैसा मुझे दिलवा दो ना.
0: बाद तुम हमेशा ऐसी नोटी वाली बातें करते रहते हो. खैर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं शहजादी. कुछ और बातें जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपको अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. और मेरे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत शहजादी जो कि यहाँ के पास आउट हैं. खूबसूरत इसलिए क्योंकि उनके दिल के विचार बहुत ही खूबसूरत हैं. खूबसूरत इसलिए कि लोगों की दुआएं लेती हैं, पैसे नहीं लेती हैं. खूबसूरत इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हैं. तो शहजादी हैं मेरे साथ, जानेंगे जरूर और आगे की बातें, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद. कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ.

0: अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम में, यानी गगन के साथ। और इस वक्त शहजादी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहां की आप एलुमनाई रही हैं। आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया 2018 से 2020, ये एक समय था। और इसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक, आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, ये इनकी सोसाइटी है। और बहुत कुछ इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं एक ऐसी खास बात के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। कोरोना का समय ऐसा समय रहा कि जिसकी वजह से सब लोग परेशान रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर खुदा कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ शहजादी ने सोचा और लोगों के बीच में गई। क्या रहा वो कोविड का समय, किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की, किस तरीके से इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा, शहजादी अब आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए।
1: हाँ, कोविड का जो टाइम आया था वो हमारे इस वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक का था टाइम था। सबने डरती थी, सबने घर से बाहर नहीं आया। अगर उस टाइम में मैंने जब स्टडी मेरा पास आउट हो गया तो मैंने बांग्लादेश चला गई। जाने के बाद मैं कोविड में स्टार्टिंग किया, काम किया। कोविड का जो फुल आईसीयू है, 50 ICU है, उसमें मैंने इंचार्ज था, उसका इंचार्ज था, उसके काम किया। मैंने खुद भी 4 बार कोविड से आक्रमण हुआ है।
0: Oh my God.
1: तो पहले बार जब हुआ था तब तो कोविड का काम करते करते, क्योंकि हमारा उधर का हार्ट का पेशेंट आती है, कोविड भी है, उसका हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो उस जो टाइम था, उस टाइम मेरे को एक ही सोचना था कि मेरे को इसको बचानी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं कोविड का ओपन ड्रेस जो था उसको ओपन करके मैं खा रही थी, तो उस टाइम एक बच्चा ने मेरे सामने आकर बोले मेरा पापा अभी अंदर गया है, वो क्या बचेगी मेरा पापा, क्योंकि मैं खो दूंगी। तो वो मेरा दिल में चला गया। तो मैंने सोचा, उसका हार्ट अटैक आया था, उसको कोविड पर था, हार्ट अटैक था, तो उस टाइम मैंने खाना सिर्फ लेंगे, तो मैंने उसको उधर के छोड़ के मेरा कोविड का ड्रेस भी नहीं पड़ा। मैंने बोला कोविड का ड्रेस पड़ने में 10-5 मिनट लगेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उसको सेव नहीं करूंगी तो ये बच्चे को इसको पापा चला जाएगी। तो हमने गया उधर को, उसको CPR दिया। CPR देने के बाद, कोविड का पेशेंट को CPR देना मना है, क्योंकि CPR देंगे तो एक्सप्रेस होगी उसमें, इसलिए जो वायरस फैलेगी, क्योंकि उसको कवर करके सेव करनी है। तो मैंने बोला वो सब डॉक्टर जो था उसने बोला हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लेंगे, मेरे को बचाना है इसको। तो उसको ना 25 मिनट कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने मेरा हौसला नहीं छोड़ा, मैंने बोला फिर 10 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है, क्योंकि उसको बच्चा जो रोते ना वो मेरा दिमाग में खेल रही थी। तो मैंने फिर 10 मिनट किया, फिर एट द लास्ट 7 मिनट ही कम बैक।
0: आए हाय माशाल्लाह।
1: तो
0: उसने तुम्हारे चरण कहाँ है शहजादी, तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम जीत गए, तुमने हमारा दिल ले लिया। मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, किसी की जिंदगी लाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं गगन। हाँ वाकई ये नेक काम किया, मेरी आंखें भी नम हो गई शहजादी, जिस तरीके से बहादुर अपनी बात रख रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया, कसम से हमारे बहादुर का, हमारे श्रोताओं का, कि किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हौसला अगर आपका बुलंद है तो निश्चित तौर पर वो काम हो ही जाता है। आपने 25 मिनट तक CPR दिया, उसके बाद 10 मिनट तक फिर आपने दिया, आप थकी भी होंगी, तो कैसा रहा वो पीरियड?
1: वो जो पीरियड था उसमें ना मेरे को इतना थकान नहीं लगा। उसने मेरे को एक ही चीज था कि वो जो आदमी था वो 35 का था और उसका बच्चा 5 का था, बहुत क्यूट था।
0: Oh my God.
1: तो और उसको बीबी भी 17 का है। हमारा कंट्री में मुसलमान जल्दी शादी कर लेते हैं, तो एक बच्चा, एक 17 ईयर्स का लड़की, उसको आहार देख रही है और उसको बचाएंगे तो मैं नर्सिंग में क्यों आई? तो यही मेरा था। तो मेरे को था, मेरे को जो, हाँ मेरे को अगर CPR 5 मिनट देती है तो उसको हैरान हो जाती, वो नहीं दे सकती। लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे साथ और भी एक ब्रदर था, उसका नाम है रकीब, तो उसने भी किया। उसने बोला आप इतना मत करो, मैं कर रही हूँ। तो उसने कर रही है, मैंने बोला मेरे सेटिस्फाई नहीं रही हूँ। मैंने बोला मैं CPR का आहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उधर से एक्रीडेशन उसी उधर में पास किया है। तो मैंने बोला मैं CPR का रजिस्टर नर्स हूँ फ्रॉम आहार से, तो मेरे को करना है, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हाल में इसको बचानी है। और उस टाइम मैं उसको कर रही थी और मेरा को मुसलमान का जो धर्म का जो प्रेयर होती है वो भी पढ़ रही थी उसके लिए। तो उसको दोनों करके फिर जब वो आया, जब उसको उसको बीट हुआ, तब मेरे को एहसान आया, अभी मैं खुश हो गया। लाइफ में कुछ करती है तो उसमें अगर सुकून मिलता है, और लोगों को जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में देखती हो, कोई दिक्कत में देखती हो, अगर उसको कुछ कर सकती हो, उसको हंसी दे सकती हो, तो मेरा लगता है ये मेरा बहुत
0: बहुत खूबसूरत शहजादी. रियली रियली मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दिल से दुआएं हैं आपके लिए, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको जमीन पर इस काम के लिए भेजा है, आप बेझिझक लोगों की मदद करिएगा. कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास सिर्फ दुआएं ही होती हैं, रुपया पैसा नहीं होता. आप इस काम को करते वक्त कभी ये मत देखेगा कि ये अमीर है गरीब है, इस काम को निस्वार्थ तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए. रियली रियली रियली रियली नाइस टॉक टू यू शहजादी. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर, और आपकी मुरादें पूरी होती जाएं. आप अच्छा करें, बेहतर करें, और बस दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास. कुछ और कहना चाहती हूँ तो आप कह सकते हैं.
1: मैं कहने चाहती हूँ कि हमारा कंट्री में बहुत जो बच्चा जन्म लेती है, इंडिया में भी लेती है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होती है, जब जन्म के बाद ही उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करने में 2-3 लाख लग जाती है. इंडिया में भी लगती है, बांग्लादेश में भी लगती है. तो उस तरह बच्चे को पास इतना पैसा नहीं होते जितना उसको लगेगी. कोई की है गरीब है, बहुत गरीब है, उसको नहीं लगती है. तो एक तुर्की का एक कंपनी है और सऊदी अरब का एक कंपनी है, जो उसको जो एनजीओ है उसमें हेल्प लेकर हमारे बांग्लादेश में एक डॉक्टर और मैं भी उसके साथ शामिल हूँ. तो उसमें मैं नर्सिंग का फ्री जो उसका जो 10 दिन का केयर होती है वो मैं फ्री में देती हूँ उसको, सब कुछ मैं करती हूँ, और जो डॉक्टर का ऑपरेशन वो करती है. तो उस तरफ का हम लोग जितना भी बच्चा है जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको फ्री में कराती हूँ. अब 400 बच्चे को ऐसे कर लिया
0: अपने सिटी में करा,
1: हमारे देश में किया, आपका इंडिया में भी करा. आपका इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है उधर में एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, तो उधर में भी हमारा डॉक्टर है, हमारा जो उधर का जो टीम है उसको साथ हमको एक साथ काम करती है. अगर इंडिया में भी ऐसे बच्ची होती है जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन उसको पैसा नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ जो हॉस्पिटल है हार्ट का, तो उधर में जा सकती है.
0: अच्छा, ग्रेट. शहजादी मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, शहजादी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो शहजादी का सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है या कुछ और दूसरा जरिया हो सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: हाँ, मेरे साथ मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है उसमें भी बात कर सकती है, मेरे इंस्टाग्राम है तो उसमें भी बात कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर कोई की किसी को मदद लगेगी और कोई भी हेल्प, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी का मदद करेंगी तो दूसरा बार अल्लाह ने मेरे को लिए कुछ भेजेगी मदद करने के लिए. एक्चुअली आई डोंट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी डाई, when I die people should have a smile on their face, that this is Shahzadi.
2: अरे बेटे, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे तो दिन अभी शुरू हुए, और तुम देखो जाना बेटा एक दिन सबको है, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमारे दिलों में रहोगे. शाबाश शाबाश मेरे लाल, लगे रहो.
0: देखो शहजादी है तुम ऐसे,
2: अरे नहीं शहजादी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आई लव यू शहजादी.
0: ये बहादुर है, ये ऐसी सी बातें करते हैं.
2: अरे प्यार करना कोई गलत बात है शहजादी? तुम बताओ.
1: नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो दिल से करना चाहिए.
2: हाँ देखा तुम,
1: प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है. शहजादी मेरी तरफ से रियली रियली रियली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप नेक काम कर रही हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, और बस यही प्रार्थना है परवरदिगार से कि आपका ये काम अच्छा चलता
1: है. एक मैं बात बताऊं, जब मैं कोविड में काम करने थे तब मेरे को जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ही हॉस्पिटल है, तो उसका जो हॉस्पिटल से मेरे को जॉब ऑफर आया था, उसका 4 लाख सैलरी था, और दूसरा आया था कनाडा से, तो उसमें भी मेरा हाई सैलरी था. तो मैंने सोचा अगर मैं इस टाइम में कोविड में अगर अच्छा सैलरी मिला, इस कोविड में सब मौका ढूंढती है, तो इस मौका में चला जाएंगे तो मैं खुद को गिल्ट फील करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे को उस टाइम कहाँ पे भी नहीं जाना था, मेरे को मेरा खुद का कंट्री का लोगों का हेल्प
0: करूंगा, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जॉब में शायद बंद कर रह जाएंगे. ये काम अगर आज आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे, और आपके जरिए लोगों को मदद भी मिलेगी. तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें.
2: मुझसे दोस्ती करोगे शहजादी?
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं.
2: मैं नंबर लेने वाला हूँ, तुम देखते रह रही हो.
1: ठीक है,
0: बहादुर नंबर आपसे जरूर एक्सचेंज करेंगे. तो शहजादी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा?
1: हाँ, मेरे को आपके साथ बात करके बहुत अच्छी लगा। आपका बहादुर जो है उसको भी बहुत अच्छी लगी।
2: देखा मेरी जो निकल मजा आ गया, मैं फेमस हो गया। देखो गगन, बांग्लादेश जाऊंगा मैं, नीदरलैंड जाऊंगा मैडम, जहाँ जहाँ जाएंगी मेरे बारे में बताएंगी कि वहाँ एक बहादुर है, मेरे को आई लव यू बोला था उसने।
3: चलिए जनाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहादुर को इन्होंने बहुत पसंद किया, आपके काम को हम सब ने पसंद किया। दिल से एक बार फिर शहजादे आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, शुभकामनाएं। माधवी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? माधवी

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में

0: और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे मौसम में बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। सुनने में आ रहा है कि 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की बारिश की संभावना, तेज हवाओं आंधी की भी संभावना है। और इसके अलावा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कि सावधानी बरतने की बहुत बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, लापरवाही मत बरतिएगा। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और क्या है डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मंडे यानी कि सोमवार में आप सबने गृह प्रवेश कर लिया है, यानी कि सैटरडे को संडे को फंडे में तब्दील करने के बाद फाइनली मंडे में हम सब आ चुके हैं ऑफिस के लिए। कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग मेरी तरह ऑफिस पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा यही कि सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि चढ़ते उतरते मौसम बनते बिगड़ते हमारी सेहत पर उसका फर्क पड़ता है। बच्चों का, बुजुर्गों का, बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखिएगा जिनसे आप बेपना मोहब्बत करते हैं। पानी भरपूर पीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रिमझिम रुनझुन बारिश के आसार हैं। अपडेट निकल कर क्या सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास के, उसके बारे में जान लेते हैं। और सुनने में आ रहा है कि 34 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान और उमस के कारण 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अधिकतम तापमान दोपहर के वक्त में 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बारिश की संभावना, दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और शाम को हल्की बूंदाबांदी या बौछार पड़ने की 15 से लेकर 20 प्रतिशत तक संभावना है। तो कुल मिलाकर लापरवाही आपको नहीं बरतनी, मौसम ऐसा ही रहने वाला है। अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं तो मौसम की जो भविष्यवाणी है उसको सोचकर समझकर आप आगे निकलेगा। वक्त का इशारा यानी कि छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:29 हो चुके हैं। 15 तारीख है यानी कि सोमवार का दिन। एक नई एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जीरो पॉइंट की तरफ जब हम आ रहे थे महामाया फ्लाईओवर की तरफ से, हमने देखा कि एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ कार से। थैंक गॉड किसी को चोट ज्यादा नहीं लगी, वो आदमी सुरक्षित था। सबसे खास बात यह थी कि हेलमेट उसके हाथ में नहीं था, हेलमेट उसके सर के ऊपर था। कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कि सुरक्षित चलिए, सेफ्टी के साथ आप आगे बढ़िए और जो नियम कायदे कानून हैं ट्रैफिक के उसका पालन करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। वहां पर लोग रुके हुए थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, पुलिस भी सही समय पर पहुंच गई थी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हमेशा अप टू डेट रखें, यातायात के नियम कायदे कानून का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। दूसरी गलती हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि जब पता है कि जाम की स्थिति बनी हुई है तो अनावश्यक आप हॉर्न न बजाएं। जैसे ही जाम खुलता चला जाएगा, सामने वाले को भी जल्दी है ना, तो वो रास्ता आपको देता चला जाएगा, है ना। सीट बेल्ट का आप इस्तेमाल करें। बच्चों को भी अगर आप कहीं लेकर जा रहे हैं तो एक अच्छा संदेश आपकी तरफ से उनको जाना चाहिए। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि रेड लाइट को जंप कर जाते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानी हो जाती है। आपकी लाइट है नहीं, आपने जंप किया, सामने वाले की लाइट ग्रीन हो चुकी है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरी रानी गगन के साथ। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि जेवर एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट की पहली लैंडिंग, लख बधाई, बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वापसी में क्या होने जा रहा है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू हो चुकी है और यहां से उड़ने वाली पहली फ्लाइट से 172 यानी कि 172 जो किसान हैं लखनऊ जाएंगे और वहां मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से वो मुलाकात करेंगे और उनका आभार जताएंगे। हाँ, मतलब एक दूसरे का लोग आभार जताएंगे और होना चाहिए। आभार के बाद बेटा साभार, हाँ ये भी उसी के आसपास का है। अच्छा, और आने वाले समय में बहुत जल्दी मतलब जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। तो अगर आप कहीं आ जा रहे हैं, आना जाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा दिन है। जेवर के जो विधायक हैं धीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मैं जेवर के लोगों के का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सच बात तो ये कि जब आप किसी शहर का, गांव का, ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वाकई उन सब के लिए एक सपना साकार होना जैसा होता है कि जिसके बारे में हमने सोचा वो सपना आज हमारा साकार हो रहा है। तो लख बधाई, बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी यूँ समझ लीजिए कि एक आवागमन शुरू होने जा रहा है। नई सारी, बहुत सारी, कई सारी बसें हमें मिल भी चुकी हैं। ट्रैफिक भी बढ़ेगा तो हम सबको कमर कसनी होगी। और इस बात के लिए सबसे पहले लख बधाई, बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी, नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और लखनऊ से फ्लाइट का बौछारों से स्वागत किया है। लखनऊ से जो फ्लाइट आई है जेवर एयरपोर्ट पर, उसका बौछारों से स्वागत किया गया है और बहुत जल्द पैसेंजर्स का भी आवागमन होने शुरू जा रहा है। और यूपी के 8 ज़िलों में एक और खबर है, उसके बारे में जान लेते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट के लिए शुरू होने जा रही है बस सेवा और पड़ोसी जो स्टेट्स हैं उनका भी यूँ समझ ली कि एक प्लान है, उनको भी बहुत जल्दी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ हमें देखने को समझने को मिलेगा। और 115 इलेक्ट्रिक बसें भी हमें मिलने जा रही हैं। यूं समझ लीजिए कि सिटी बस का जो नेटवर्क है वो मजबूत होने वाला है और खास होने वाला है। लेकिन हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा रखें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जितनी यूं समझ लीजिए कि आज हरियाली है, कभी हरियाली दिल्ली में भी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन आज भी यूँ समझ लीजिए कि लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। लेकिन ये सच है कि जैसे कि भीड़ बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम सबको एक पौधा अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाना है, पर्यावरण का ख्याल रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली NCR का जो असर है, असर यहां पर भी आता है पोल्यूशन का, लेकिन हमें उससे अपने आप को बचाकर रखना है। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11, फिर होगा आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:59, कल होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं आपको

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
7: Solo Sharda.
8: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो

0: कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
1: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट करें।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: करें। जगह मिल जाए, लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना, बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको, एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कई रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है तो, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है ये, किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है कि जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सब का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
0: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है, अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है, प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जी हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा और स्मार्ट मिलकर के एक कार्यक्रम चला रहे हैं, स्वास्थ्य जन जागरूकता का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं आंखों की। देखिए वैसे तो शरीर के सारे जो अंग होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन जो हमारी आंखें होती हैं अगर हमको मान लीजिए दिखाई ना दे तो हमारी पूरी दुनिया वीरान हो जाती है। तो हम अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखें ताकि हमारी जो आंखें हैं वो स्वस्थ रहें, हम अच्छे से देख पाएं और अपने जो काम है वो कर पाएं, तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा जी। आप सीनियर आंखों की डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर रश्मि शर्मा जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशि जी, और जैसा कि आपने कहा बहुत सही बोला आपने, आंखों से नहीं देख सकते तो आंखें तो सब कुछ वीरान है। बिल्कुल सही बात है, दुनिया अंधेरी हो जाती है, जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है, उनको एक साथ में कोई असिस्टेंट चाहिए होता है, तो ऐसी स्थिति ना आए इस पे सरकार भी बहुत सारा काम कर रही है। अंधता निवारण पे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर हम उसको अपने उसमें जीवन में लाएंगे तो शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे कि हम शुरू से शुरू करते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो वो अगर बार बार आंखों को खोलता बंद करता है, जल्दी जल्दी खोलता बंद करता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हम लोग आज की डेट में जो मोबाइल फ़ोन आ गया है, हम छोटे बच्चे को मोबाइल फ़ोन भी पकड़ा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि 5 साल तक बच्चे की आई डेवलप, उसकी विज़न डेवलप होती है। अगर हम पहले ही उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देंगे, वो पास में ही देखता रहेगा, तो वो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, वो दूर नहीं देखेगा, तो पहली बात। और जैसा कि मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे नुकसान भी हैं, जो तेज रोशनी आँखों पर पड़ती है उससे भी ड्राई आई बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ें, ये छोटे बच्चों से लेकर और जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये परेशानी का सबब है, क्योंकि उनके 8 से 9 घंटे स्क्रीन पे बीतते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा बीच बीच में आंखों को रेस्ट दें, और मोबाइल का उपयोग अगर करना है तो थोड़ा दूर से करें, एक हाथ की दूरी पे रखें, उसका जो उसमें हम ब्राइटनेस यूज़ करते हैं वो एक नॉर्मल उस पे रखें, हम ब्राइटनेस को मीडियम, हाई या लो में नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे आजकल लो में रख के ही काम करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। दूसरा, जो बच्चे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, तो उस पे पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पास में जाके देख रहा है, किताब या कॉपी के बहुत ज़्यादा पास में देख रहा है, तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर से मेरा मतलब है कि उसको चश्मे का नंबर हो सकता है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मोस्टली जो प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें तो बच्चों की जांच होती है, सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चलाया जाता है उसमें ये जाँच होती है। प्राइवेट स्कूलों में भी कई लोग जाँच कराते हैं, तो बच्चे की समय समय पर आप स्वयं भी, पेरेंट्स से मेरा गुजारिश है कि आप स्वयं भी अपने बच्चों की जाँच हर साल में एक बार ज़रूर कराएँ। और जो इतना धूल मिट्टी वगैरह रहता है उसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं सभी लोग कि घर में जब आएं वापस तो हम अपनी आँख को अच्छे से धोएं, बीच में भी जितनी बार हो सके आँख को पानी से धोते रहें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ध्यान रख के आप अपने आँख को की रोशनी को बचा सकते हैं। बड़े लोगों में मोतियाबिंद की वजह से जो ब्लाइंडनेस आती है, तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आप उन पे ध्यान दीजिए कि वो पकड़ पकड़ के टटोल टटोल के तो नहीं चल रहे किसी चीज को, या वो ये कंप्लेंट तो नहीं कर रहे कि हमको कम दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा उस पे ध्यान दें और उनको एक बार लाके जरूर जांच करें।
4: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं। और अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आंखें कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये सब बातें आप बता चुकी हैं। हमारे जो CSC ढाणा कासना है, तो यहाँ पर जो आंखों की पेशेंटों के लिए, मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं?
5: देखिए, शुरू में तो इतना ज़्यादा नहीं था अभी, लेकिन अभी होंडा के सौजन्य से हमें यूनिट चेयर और ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर और स्लिट लैंप हमें प्रदान किया गया है, जिससे हमें पेशेंट को देखने की सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो पेशेंट को हम थोड़ा टाइम लगता था देखने में जब हम मैन्युअली करते थे, तो उसके कंपैरिजन में अभी हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी से पेशेंट देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर है, यूनिट चेयर है, विज़न के लिए सारी सुविधाएँ हैं, और अगर कोई फॉरेन बॉडी वगैरह कुछ आंख में गिर जाती है तो उसके लिए हमारे पास स्लिट लैंप वगैरह भी है।
4: बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो सामान्य ज़रूरत है जो एक इंसान की, जो वो कहीं बाहर जाके कराते हैं, जो काम यहाँ पर आसानी के साथ अपने CSC ढाणा कासना में निशुल्क हो जाते हैं, तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है।
5: और मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो कहना चाहूँगी, काफ़ी लोग चश्मे का विकल्प दवाइयों में खोजते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको कम दिखाई देता है, आपका चश्मे का नंबर है, तो कृपया चश्मा ज़रूर लगाएं, और जैसा प्रिस्क्राइब किया गया होता है, दूर और पास का चश्मा तो हमेशा लगाना होता है, अगर दूर और पास का एक साथ है तो वो हमेशा लगाएं। कई लोगों की और स्पेशली लेडीज़ की आदत होती है कि वो लोग पास का ही चश्मा उपयोग करती हैं, दूर के लिए उपयोग ही नहीं करती। वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा फंडा है आँख का, हमारी आँख कैमरे की तरह काम करती है, हमारी आँख को जो दिखाने का काम करता है वो ब्रेन करता है। तो जब आँख उस चीज को देख ही नहीं पाएगी, ब्रेन तक पहुंचा नहीं पाएगी, तो फिर कैसे आँख, ब्रेन उसको कहेगा कि सामने क्या है वो देखो। तो इसीलिए चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम ये होता है कि चश्मे से आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब आप चश्मे का उपयोग नहीं करते हैं तो कई बार ब्रेन उस चीज़ को देखना छोड़ देता है और वो फिर ब्लाइंडनेस की तरफ जाने लगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि अगर आपका चश्मे का नंबर है तो उसको अवश्य लगाएं।
4: बिल्कुल, तो चश्मे की आपने बात की है, तो बहुत बार तो ये गड़बड़ हो जाती है, लोग नंबर उनका कुछ है और कुछ नंबर का चश्मा लगा रहे हैं, तो इसका चयन करने में कितनी सावधानी रखना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
5: जी, उसके लिए हमेशा जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स या जो क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, आप जांच उन्हीं से कराएं। ये कह लीजिए दुर्भाग्य है देश का कि मेडिकल स्टोर तो सिर्फ जिसने फार्मेसी किया होता है वही खोल सकता है, लेकिन चश्मे की दुकान कोई भी खोल सकता है।
4: जी,
5: तो इस पे काम बहुत ज़रूरी है, सरकार का ध्यान भी इस पे आकर्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चश्मे की दुकान खोल लेने से, कोई फिटिंग करना जानता है तो वो भी चश्मे की दुकान खोल लेता है, तो वो लोग हमेशा गलत नंबर देते हैं जिससे कि आंखों को नुकसान होता है, और लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते, वो उनको लगता है कि हाँ हम सही चश्मा लगा रहे हैं, लेकिन कई बार आँख दर्द हो रही होती है, सिर दर्द हो रहा होता है, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है जिसको कि वो समझ नहीं पाते, और गलत चश्मा लगाने से दिक्कत होती है।
4: तो सही चश्मा कहाँ से खरीदें उसके बारे में बताइए।
5: आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जांच कराएं, सब जगह सरकारी अस्पताल में ये सुविधा है, वहाँ जांच कराएं, और जो भी क्वालिफाइड, बार बार यही बात बोलूंगी, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर और ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं आप उनसे जांच कराएं।
4: बिल्कुल, सामान्य बातें आपसे जानना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को अपनी आँखों का जो ध्यान है, ख्याल है, रोजाना कैसे रखना चाहिए ताकि उनकी जो आँखों की रोशनी है वो बरकरार रहे।
5: जी, तो मोबाइल का उपयोग थोड़ा कम करें
4: जी,
5: जब ज़रूरत हो तभी करें। जो IT सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए तो कोई विकल्प है ही नहीं, तो उनके लिए मेरा सुझाव यही है कि आप प्रॉपर अपनी आँखों को ब्लिंक करते रहें, बीच बीच में आप हर आधे घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद आँख को रेस्ट दें, थोड़ा दूर देखें और फिर उसके बाद वापस काम में करें। कुछ भी आपके उसमें डाउनलोड हो रहा हो या अपलोड हो रहा हो तो उतनी देर आप आँख बंद कर लें, उसको रेस्ट दें। जो नॉर्मल और जो लोग आईटी सेक्टर में काम नहीं करते, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए यही सजेशन है कि धूल मिट्टी से आँखों का बचाव करें। आँख में कोई लालामी या कुछ भी होता है तो उसके लिए, या पानी आता है तो उसके लिए तुरंत संपर्क करें डॉक्टर से, आँखों के डॉक्टर से। और कोई भी दवाई ऐसे ही अपने आप से मेडिकल स्टोर से खरीद के ना डालें, ये मेरा बहुत, मैं इस पॉइंट को बहुत ज़ोर से बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप नॉर्मली यही होता है, बुखार हुआ, दवाई लेने चले गए, केमिस्ट ने दवाई दे दी, आपने ले लिया। आँख एक ऐसी चीज़ है, आपका हाथ टूट जाएगा, जुड़ जाएगा दोबारा, लेकिन आँख एक ऐसी चीज़ है कि उसमें अगर एक बार कोई कमी आ गई तो बहुत मुश्किल होता है उसको रिकवर करना। तो इसीलिए कोई भी दवाई लेकर अपनी आँख में मत डाल लें। आँख हमेशा प्रिस्क्राइब्ड जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट करे, आँखों का डॉक्टर करे या कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट करे, उसी से ही दवाई लेके आप डालें, उसी की सजेस्ट करी हुई दवाई आप डालें।
4: बिल्कुल, ये बात तो ज़रूर ध्यान रखेंगे हमारे सुनने वाले। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर हमारे जो शरीर होता है कहीं ना कहीं उसको पोषण की आवश्यकता होती है, तो क्या आँखों की जो रोशनी है पोषण का इस पर असर पड़ता है, क्या व्यक्ति को खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए?
5: जी बिल्कुल, जैसे कि

0: विटामिन ए से भरपूर जो भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कभी किसी को अगर भेंगापन होता है बच्चे को या किसी को पैरालिटिक स्क्विंट हो जाता है तो उसमें भी विटामिन बी ट्वेल्व बहुत अच्छा काम करता है, B6, B12। इसके अलावा अपनी आँखों का विशेष ख्याल रखें, बार बार उसको पानी से साफ करते रहें। पानी से अच्छी कोई दवाई नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: जो सबसे पहले आपको अवेलेबल होती है, तो मेरे हिसाब से तो यही सब चीजें हैं। और
1: पानी से अपनी आँखों को साफ कर लीजिए जब भी आपको मौका मिले, और अच्छा अपना आहार रखिए, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है उन बातों का आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे जो समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों की तरफ ध्यान देंगे और अपने जीवन में उन बातों को उपयोग में लाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
4: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
7: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।
0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो

शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वो राष्ट्र भी सशक्त है। राष्ट्रीय एकता लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वो भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता और संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। अनेक विभिन्नताओं के बाद भी सभी लोग परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में हैं, उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। हमारे देश में अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान और वेशभूषा बिल्कुल अलग है। ये सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, वो हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि और हमारा राष्ट्र होती है। उसके प्रति गहरा प्रेम ही राष्ट्रीयता की भावना होती है। हम सदैव उसके गौरव की रक्षा करें और साथ ही उसकी संस्कृति, उसके प्राकृतिक संसाधनों और उसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान करने का दायित्व निभाएं और ऐसी धार्मिक, राजनीतिक, भाषागत और जातिगत धारणा से बचें जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचती हो। तो हमारी राष्ट्रीय एकता यूं ही मजबूती के साथ बनी रहे, इसके लिए हमें आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही राष्ट्रीय एकता की, और जब बात राष्ट्र की हो रही है तो इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति गीत। किसान मित्रों, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फसल को आवश्यकता अनुसार पानी ना मिले तो फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, ऐसी जगह पानी की बहुत किल्लत रहती है और फसलों को उचित मात्रा में पानी भी नहीं मिलता और किसान भाइयों को खेती करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि हमारे देश की 85% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग करती है। 65% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की पानी की जरूरतों को भी भूजल से ही पूरा किया जाता है। पानी के इसी अतिदोहन और अनियमित उपयोग के कारण भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने अटल भूजल योजना चलाई है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सामुदायिक नेतृत्व वाला भूजल प्रबंधन कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। योजना का उद्देश्य भूजल की मात्रा में इजाफा करना है, साथ ही किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भी ये योजना भारत सरकार की ओर से लाई गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण सुनिश्चित करेगी। साथ ही सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना अटल भूजल योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आजकल हर कोई किसान भाई चाहता है कि वो अपने खेत में 12 महीने फसल उगाए और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाए। ऐसे में ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके आप खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने खेत में 12 महीने खेती करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन हाउस तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपकी ये इच्छा पूरी होगी। और इस तकनीक से आप 12 महीने खेती कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस का मतलब ऐसी परिस्थिति से जहां आप स्वयं से वातावरण को नियंत्रित करके फसल को आसानी से उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस तकनीक से फसलों को विकसित करने और उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये फसलों को संरक्षित करने का एक तकनीक है। तो किसान मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खेत में 12 महीने फसल करें तो आपको ग्रीन हाउस तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस तकनीक का सहारा लेकर के फसल करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के इस तकनीक के बारे में और विस्तार से समझ सकते हैं और किन किन उपकरणों की इसमें आवश्यकता होगी ये भी आपको वहां बता दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई प्रशिक्षण होता होगा इसके बारे में तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तब इस तकनीक के जरिए आप 12 महीने खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना ग्रीन हाउस तकनीक के बारे में। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा।

ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा द्वारा गाई गई इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
3: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
4: माँ जी, मुझे टीबी है।
3: टीबी और छुपा कर रखा?
4: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दे।
3: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

साथियों, काया में चक्कर से आने लगे और यम के दूत सत्यवान के प्राण लेने के लिए सामने खड़े हो गए। मेरे मेहरबानों, सावित्री के तप से जो सावित्री के मुखमंडल पर तेज था, उस दहकती ही ज्वाला से यम के दूत वापिस चले गए। मेहरबानों, सत्यवान को क्षण क्षण दर्द ज्यादा होने लगा। मेरे मेहरबानों, सत्यवान सावित्री की तरफ देख कर और ये कहने लगा, सावित्री आज मैं विधवा करके तुझे जा रहा हूं। एक दिन वो था सावित्री कि मैंने मना किया था, तेरे पिता ने और तेरी मां ने तुझे समझाया था और यहां तक कि मुनि नारद जी ने भी बताया था, लेकिन तैने मानी नहीं। मेहरबानों, किस तरह से सत्यवान फिर कहने लगा,

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

पड़ी हुई थी। वो छलिया विश्वामित्र जिसने राज को लिया था और जिसने हरिश्चंद्र को भंग के घर बिकवाया था और तारा रोहतास को रामलाल पंडित के यहाँ केवल 60 भार सोने के बदले दोस्तों उसी ने रोहित को शराब बन के डस लिया और उसी ने आज तारा के मुंह पर खून लगा दिया और उसके आगे खेत कलर का आधा शरीर कच्चा होया और आधे से रक्त बह रहा था। आज तारा को डायन बना दिया और उधार काले को आदेश दे दिया वहां के राजा ने काशी काले इस डायन को मरवा दो ये मानस खानी है। मेहरबानो आज हरिश्चंद के हाथ में खूनी तलवार और

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में एक चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
6: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
6: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: फातिमा बेटा, तुम्हारे अब्बू आ रहा है इंदौर से, ये घर पूरा बिखरा हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, उनको बिल्कुल इस तरह से पसंद नहीं है कि घर में कहीं भी कोई भी सामान पड़ा रहे। तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी समेट दो और मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है।
7: जी अम्मी। अरे अब्बू, आप आ गए, अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं?
7: अब्बू वो तो मार्केट गई हैं।
8: और तुम्हारा छोटा भाई?
7: वो भी खेलने गया है।
8: सब के सब अपने मर्जी के मालिक बने बैठे हैं, घर पे ना रहो तो सब हाथ से निकलते जाते हैं। क्या जरूरत थी उनको मार्केट जाने की? उन्हें नहीं पता था कि आज मैं आने वाला हूँ।
7: अब्बू पता तो था, लेकिन किचन का सामान लेने गई है।
8: तुम्हारा भाई कहाँ है?
7: अबू वो खेलने गए हैं बाहर।
8: पिछले हफ्ते तुम्हारे टेस्ट थे ना?
7: जी अबू।
8: रिपोर्ट कार्ड?
7: वो मिला है, मैंने रखा है।
8: दिखाना जरा।
7: अभी लाती हूँ, ये लीजिए अबू।
6: अरे आप आ गए, सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम अस्सलाम, ये तुम्हारे बेटे का रिपोर्ट कार्ड है, यही पढ़ाई हो रही है, यही ख्याल रख रही हो तुम इसका, यही इसके पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो तुम।
6: लेकिन
9: रिपोर्ट कार्ड तो नंबर तो सही था उसका।
8: नंबर सही है, ये 80% मार्क्स आए हैं, ये सही है। फीस तो पूरा दिया जाता है, फीस में तो कोई कटौती नहीं होती है। टाइम से पहले तुम फोन कर देती हो कि फीस जमा करना है, फीस जमा करना है, और ये मार्क्स ऐसे आ रहे हैं उसके।
10: तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है? अब मैं समझ चुका हूँ, अब इनके पढ़ाई को हम आगे जारी नहीं रख पाएंगे। मैंने सफीक भाई से बात कर लिया, उनका एक बेटा है जो दुबई में काम करता है, अच्छी खासी पोजीशन पे है, महीने का अच्छा खासा कमाता भी है, वहाँ पे शादी करेगी, खुश रहेगी जिंदगी भर।
6: अरे इतनी जल्दी? और शादी तो होनी ही है, उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए।
10: कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की, हमने आपसे क्या कहा, एक बार का कहा आपके कान में नहीं घुसता है। और ये क्या बदतमीजी है, तब से मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ, किसी ने मुझसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा।
6: जी जी जी अभी लाती हूँ। फातिमा बेटा पानी लाओ अब्बू के लिए।
7: हाँ अब्बू ये पानी लीजिए।
10: ये क्या है, सिर्फ पानी, सादा पानी, इसके साथ कुछ घर में है नहीं, मैं पैसे नहीं भेजता वहाँ से।
6: अरे फातिमा अंदर मिठाई रखा है, मिठाई में से लेकर।
10: कोई जरूरत नहीं है, ये पानी तुम पियो ये।
7: अम्मी आप चुप हो जाइए, मत रोइए।
6: फातिमा तुम अंदर जाओ। खाना लग गया है टेबल पर। फातिमा।
3: जी अम्मी।
6: रोजी और राजा दोनों को बोल दो और अब्बू को भी बोल दो आकर नाश्ता कर ले।
10: खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, बनाया क्या है खाने में तुमने?
6: आज आपकी पसंद का राजमा पूरी बनाया है मैंने, और उसके साथ रायता भी है, सलाद भी है, बस यही सब।
10: यार चलो तुमने बना ही दिया है, वैसे रात में कुछ ऐसा बनाना कि लगे कि हाँ मतलब ये खाने लायक। ठीक है लगाओ इसे।
6: जी
10: सुनो, मुझे ये पूड़िया कम देना और ये हटाओ ये, और रायता दे दो थोड़ा सा, बस इतना ही।
6: जी ठीक है बैठिए।
10: और छोटू राम पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी, या सिर्फ बस ऐसे ही खेल चल रहे हैं? थोड़ा पढ़ भी लिया करो, वरना इसी बैट से टांगे तोड़ के तुम्हारे घर पे बैठा दूंगा मैं। अगर इस बार तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए ना, फिर तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ।
7: अब वो आपसे कुछ बात करनी थी हमें।
10: हाँ बताओ।
7: वो अगले हफ्ते मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है।
10: हाँ फिर?
7: तो उसके लिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए।
10: वैसे एक बार फिर से मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि मैंने कल ही कहा था कि अगले हफ्ते हम तुम्हारे निकाह की बात के लिए कहीं बाहर जाने वाले हैं, और आगे पढ़ाई करने की कोई जरूरत है नहीं। ये पढ़ाई का भूत अपने सर से उतारिए, चुपचाप से अम्मी के साथ जाइए किचन में, सीखिए कि खाना कैसे बनाया जाता है, बस काफी आपके लिए। जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगे, ये फालतू के पढ़ाई के चक्कर में आप ना पढ़े तो ही बेहतर रहेगा, समझिए आप।

0: हाँ फातिमा, मैं भी तो परेशान हूँ इस बात से।
1: और अम्मी, अगले हफ्ते मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। और ये जो क्लासेस चल रही हैं बिना लैपटॉप या बिना टैब की, मैं क्लास कर भी नहीं सकती। और सुबह देखा ना आपने, अबू से कहा तो वो कैसे डांट रहे हैं, बोल रहे हैं पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। कम से कम मेरा 12th तो फाइनल हो जाने दीजिए आप लोग।
0: हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और रही टैब की बात, तो उसकी चिंता तो तुम छोड़ दो, टैब की व्यवस्था मैं कर दूंगी। तुम जाओ आराम से पढ़ाई करो।
1: थैंक यू अम्मी, अब बहुत अच्छी हो। गुड मॉर्निंग अम्मी।
0: गुड मॉर्निंग।
1: आज नाश्ते में क्या है?
0: नाश्ते में क्या है वो बाद में बताएंगे, पहले जाओ फ्रेश होके आओ।
1: अच्छा अम्मी, अब्बू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
0: अरे हाँ, वो तो मैं बताने ही भूल गई थी तुमको, तुम्हारे अब्बू ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं, तो 2 दिन बाद ही आएंगे।
1: जी अम्मी।
0: अच्छा फातिमा सुनो, थोड़ा काम है घर में, इसको कर लेना, मैं बस आधे घंटे में आती हूँ मार्केट से, बहुत जरूरी काम है।
1: कहाँ जा रही है अम्मी आप?
0: बस बेटा बहुत जरूरी है, बता नहीं सकती, लेकिन तुम ये जो काम बचा है ना इसको कर लेना, मैं आती हूँ।
1: जी अम्मी ठीक।
0: फातिमा।
1: जी अम्मी।
0: बेटा एक गिलास पानी लाना।
1: अभी लाई। ये लीजिए अम्मी पानी। वाओ टैब, ये मेरे लिए है अम्मी, कितना खूबसूरत है। वाह, थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू सो मच।
0: अब तुम आराम से पढ़ाई करो, शादी की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना।
1: हाँ अम्मी ठीक है।
0: कैसा लगा वैसे तुम्हें?
1: बहुत खूबसूरत है, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट आप दोगे मुझे।
0: ये गिफ्ट नहीं है बेटा, ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए है।
1: हाँ मम्मी मैं समझ रही हूँ, मैंने कहा था ना आपसे।
0: फातिमा देखो दरवाजे पे कौन है।
1: जी अम्मी। अरे अबू आप।
2: हाँ तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? एक सेकंड दिखाना जरा, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये कहाँ से आया?
1: वो अब हमें लेकर आई हैं।
2: ये तुमने इसे लाके दिया है? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
1: वो
2: कहाँ से पैसे आए तुम्हारे पास?
1: मेरे गहने।
2: ये टैब खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने तो नहीं दिए थे तुम्हें कोई पैसे।
1: हाँ मैंने मेरे सोने के कंगन बेच दिए।
2: तुमने सोने के कंगन बेच दिए अपने इस टैब के लिए? तुमको मैंने बोल रखा था ना ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में ना पढ़ो, तुम्हारा निकाह मैंने तय कर रखा है। तुम ये टैब लाओ।
1: छोड़ दीजिए ना, पढ़ने दीजिए उसको। अबू।
0: चुप हो जाओ फातिमा।
2: फातिमा तुम अंदर जाओ।
1: सीधे।
2: तुम्हें किसने बोला था अपने कंगन बेचने को?
1: वो उसकी पढ़ाई की।
2: वो कंगन तुम्हें मैंने दिया था ना?
1: जी।
2: तुमने उसे बेच कैसे दिया? कैसे बेच दिया तुमने?
1: ये फातिमा की पढ़ाई के लिए जरूरी था।
2: तुम्हें मैंने बोला था ना कि उसकी पढ़ाई बंद करवा दो, उसकी निकाह मैंने तय करवा रखी है।
1: हाँ बोला था आपने।
2: फिर तुमने क्यों बेचा? क्या जरूरत था?
1: जरूरत था उसकी पढ़ाई के लिए, मुझे लगा कि पढ़ लेगी तो उसका ये लास्ट ईयर फाइनल हो जाएगा।
2: मैं लड़के वालों से कल ही बात करता हूँ, अगर दो हफ्ते के अंदर इसकी मैंने निकाह नहीं करवाई ना फिर तुम देखना।
1: नहीं क्यों परेशान कर रहे हो?
2: मोहतरमा, क्या आपको ये निकाह कबूल है?
1: कबूल है।
2: क्या आपको ये निकाह कबूल है?
1: कबूल है।
2: क्या आपको ये निकाह कबूल है?
1: कबूल है।

0: मुबारक हो।
1: अरे अम्मी जान, आप काम कर रही हैं? फातिमा कहाँ है? रुको मैं देख के आता हूँ महारानी कहाँ बैठी हुई है। आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है कि घर में कितना काम पड़ा है? आपके वालिद ने हमें इतना पैसा नहीं दिया है कि हम जाके नौकर लाकर रखें।
2: जी जाती हूँ।
1: अम्मी जान कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हैं, शाम को पार्टी

0: रखी है और पार्टी का सारा इंतजाम आपको करना है। और यह लिस्ट है और शाम तक यह सारी चीजें बन जानी चाहिए।
1: इतना सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी।
0: तुम नहीं कर पाओगी इसका क्या मतलब? इसके लिए हम नौकर लाएं?
1: मैंने कब कहा कि आप इसके लिए नौकर लाओ, लेकिन इतना सारा काम मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी मुझे।
0: तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर कोई नहीं है और सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा।
1: मुझसे नहीं होगा इतना सारा काम, मैं नहीं करूंगी।
0: तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे से जबान लड़ाए? हमसे जबान चलाती है? हम तुम्हारे शौहर हैं।
1: आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आपको किसने ये हक दे दिया? मैं आपकी बीबी हूँ, आपकी गुलाम नहीं। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मैं मायके जा रही हूँ।
0: अच्छा, अब मायके जाएगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, मैं भी देखता हूँ अब तू कैसे जाती है। पड़ी रहे अब इस रूम में। अभी बताता हूँ मैं तुझे, मायके जाएगी तू अब?
1: हाँ, मैं जाऊंगी।
0: अच्छा, ये ले।

ये कहानी थी फातिमा की, जो मुस्लिम परिवार से थी। कहानी में आपने ये सुना कि फातिमा आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन ये बात फातिमा के अब्बू को कतई मंजूर नहीं था कि फातिमा आगे की पढ़ाई जारी रखे, और इसलिए उन्होंने फातिमा की शादी निर्धारित उम्र से पहले ही तय कर दी। फातिमा की मां ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि फातिमा की पढ़ाई आगे भी जारी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पति के गुस्से के आगे फातिमा की मां भी हार गई। फातिमा की शादी कर दी गई। जब वो ससुराल गई, तो वहां भी उसके साथ वही हुआ जैसा उसके पिता उसकी मां के साथ कर रहे थे। फातिमा का पति ना तो उसे पैसों का अधिकार दे रहा था और ना ही पढ़ने का अधिकार। फातिमा से नौकरों की तरह काम कराया जा रहा था, और एक दिन फातिमा ने जब इस बात का विरोध किया तो उसके पति ने फातिमा को मारा भी, और बाद में फातिमा के चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसे घायल कर दिया। लेकिन उसके बाद फातिमा का जो डर था वो खत्म हो गया, और उसने अपनी माँ को कॉल किया, माँ से पूरी बात बताई। उसकी माँ ने अत्याचार तब तक सहा जब तक कि उसके ऊपर हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता लगा कि उसकी बेटी के साथ भी वही हो रहा है जो उसके साथ हुआ है, तो उसने तुरंत फातिमा को साथ लिया और पुलिस के पास गई। वहाँ उसने अपने साथ और फातिमा के साथ हुए हादसे के बारे में बताया। पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें पूरी प्रोटेक्शन दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो हर रोज इस तरह की हिंसा की शिकार हैं। इस बात को सोचकर कि हिंसा करने वाला हमारा पति है या हमारा बेटा है, वो चुप हो जाती हैं और इस बात का विरोध नहीं करती। किसी को थप्पड़ मारना, दांत से काटना या किसी भी वस्तु से शरीर को चोट पहुंचाना शारीरिक हिंसा होती है। अगर आपके साथ हिंसा हो रही है तो आप महिला हेल्पलाइन या महिला थाना या इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करें। और अगर आपके साथ हुई हिंसा का आपके पास कोई सबूत है तो उसे भी साझा करें। इसके अलावा आप घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। हिंसा का विरोध करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, ना कि हिंसा सहकर आप बढ़ावा दें। फातिमा ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज कराई और उसे तुरंत ही सुरक्षा प्रदान की गई। फातिमा ने तो अपने साथ हुए हिंसा पर रोक लगाई और उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। अब बारी आपकी है, क्योंकि फातिमा की तरह न जाने हमारे देश में कितनी महिलाएं हिंसा की शिकार हैं, हिंसा की पीड़िता हैं, और इसके खिलाफ वो कुछ कर नहीं पाती हैं। तो ये सारी जानकारियां आप तक इसीलिए पहुंचाई जा रही हैं ताकि आप हिंसा को सहे नहीं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो, बोलो हिंसा को नो। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्ते।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहती हूँ, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं, हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है।

0: अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है, साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें, तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिले और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोलें। घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें। कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं। बच्चे का वजन करें। हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 8 की ध्वनि शाला में।
4: प्यारे बच्चों, आदाब। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर चमन आरा खां, NCERT नई दिल्ली से। आज हम आपको आपकी 8वीं क्लास की उर्दू की किताब अपनी जबान से एक सबक पढ़ेंगे, जो के एक नज्म है और उसका उन्वान है लो फिर बसंत आई। उन्वान ही इतना दिलचस्प है, लो फिर बसंत आई। बसंत जो है हिंदुस्तान की 6 ऋतुओं में से पहली ऋतु का नाम, जो चेत से बैसाख तक रहती है, मौसम बहार यानी मार्च के बस से आखिर मई तक का मौसम, ये बसंत का मौसम बसंत कहलाता है। तो इस ये नज्म के लिखने वाले हैं शायर जिनका नाम है हफीज जालंधरी। हफीज जालंधरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। हफीज इनका तखल्लुस था, पूरा नाम था अबुल असर हफीज। 14 जनवरी 1900 में जालंधर पंजाब में पैदा हुए। इनके वालिद स्कूल टीचर थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। 11 बरस की उम्र से उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। 11 बरस की उम्र में उन्होंने पहली गजल लिखी। उर्दू अदब की एक लंबे अरसे तक खिदमत अंजाम दी। इनके 7 शेरी मजमूए हैं, जो सबसे ज्यादा मारूफ है नगमाजार, जो 1925 में छपा। वो उर्दू सहाफत से भी वाबस्ता थे और चीफ एडिटर थे हजार दास्तान के। 1982 में लाहौर में इंतकाल हुआ। शाहनामा इस्लाम, सोजो साज, तलखाबाई शीरी इनके मशहूर नज़में हैं। हफीज जालंधरी ने नज़्म, गज़ल, मसनवी, गीत और सलाम वगैरह इतनी असनाफ में तबाजमाई की। तो आज जो नज़्म है हमारी, जैसे मैंने बताया, बसंत के नाम से है। तो जिसका उन्वान है लो फिर बसंत आई। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। चलो बेदरंग लबे आबे गंग, बजे जल तरंग मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गर्म खैज कोई नगमा, कोई गर्म खैज कोई नगमरेज, सुबुक और तेज फिर हो गया है जिंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा। फूली हुई है सरसों, नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। बसंत क्योंकि हर साल आती है, तो शायर जो है इसकी जो शुरुआत कर रहा है नज्म की, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई। बिल्कुल एक ऐसा अंदाज है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गीत वाला अंदाज, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई। बसंत क्या आती, क्या हुआ है,

फूलों पर रंग आ गए हैं। और बसंत का महीना मैंने बताया दिया कि वस्त मार्च से आखिर मई तक का मौसम कहलाता है। तो इस मौसम में तो आप जानते हैं, क्योंकि मौसम में बाहर का मौसम होता है। उसके बाद फिर शायर कहता है, चलो बेदरंग, चलो बेदरंग यानी बगैर देर किए, चलो बेदरंग लबे आबे गंग, बजे जल तरंग मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई। लबे आबे गंग दरियाए गंगा के किनारे, लब के मायने होते किनारे के। तो लबे आबे गंग दरियाए गंगा के किनारे, तो शायर जो है वो ये कह रहा है कि बगैर देर किए चलो बेदरंग, बगैर देर किए हमें गंगा के किनारे पे जाना चाहिए, क्योंकि बसंत आ गई है, बसंत का मौसम आ गया है। बजे जल तरंग, जल तरंग एक बाजे का नाम है जिसे प्यालों में पानी भरकर टीलियों से बजाया जाता है। हर प्याली में पानी की मकदार अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। आपने देखा होंगे कि बहुत सी प्यालियां ऐसी रखी होती हैं और ऐसे ऐसे करके तीलियों से जो है उसको बजाया जाता है, उसको कहते हैं जल तरंग। तो यहाँ शायर कह रहा है कि हमें, क्योंकि बसंत का मौसम आ गया है, बसंत आ गई है, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग लबे आबे गंग, यानी अब हमें जो है बगैर देर किए गंगा के किनारे चलना चाहिए। बजे जल तरंग, और जल तरंग क्योंकि बाजे बज रहे हैं, जल तरंग बज रहा है, तो हमें बगैर देर किए गंगा के किनारे पर चलना चाहिए। तो शायर बहुत ज्यादा खुश है बसंत के मौसम को देखकर, तो इसलिए वो गंगा के किनारे जाना चाहता है। अगर आप इस नज्म को अगर बच्चों गा के पढ़ेंगे, गाने की तरह से, क्योंकि एक तरह से ये जो है इसके अंदर जो बार बार एक एक लफ्ज को कहा जा रहा है, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत, तो गीत का था अंदाज है, गीत के अंदाज में अगर आप उसको कहेंगे, लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, चलो वे दरंग लबे आबे गंग, बजे जल तरंग मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई, यानी जब बसंत का मौसम आया, मौसम में बाहर के मौसम में आप देखते हैं ना, नए नए तरह के खूबसूरत खूबसूरत फूल जो हैं वो खिलते हैं, क्योंकि बारिश हो चुकी होती है, बरसात का मौसम खत्म हो जाता है, उसके बाद ये वस्त मार्च से शुरू होता है। ये खुशी का एक जो है वो इजहार उसके उनवान से ही हो रहा है कि लो फिर बसंत आई, हर साल आती है, अभी परस फिर बसंत आ गई है, अब तो बहुत ये कि हमें गंगा के किनारे जाना चाहिए, वहाँ पर अपने मन में उमंगे, नए नए फूल नए नए चीज़ें जो है आएंगी तो उसको हम देखेंगे, तो हमारे मन पर एक उमंग छा जाती है कि हम देखे जाके, मौसम जब अच्छा होता है तो फूलों पर रंग लाई। खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बाघों का हर परिंदा, कोई गर्म खेज कोई नगमा रेज, सुबुक और तेज फिर हो गया है जिंदा बागों का हर परिंदा। यह शायर कहता है कि चढ़ने वाले जानवर और उड़ने वाले यानी परिंदे, उनके पर क्या हुआ है कि वो भी जो है इस मौसम को देखकर खुश हो गए हैं। कोई गर्म खेज है, कोई नगमा रेज है, कोई तेज चलने वाला है, गर्म खेज बोलते हैं तेज चलने वाला, या मुराद उछल कूद करने वाले से है, उछल कूद करने वाले से है, और नगमा रेज सुरीली आवाज में गाने वाला, चहचहाने वाला, सुरीली आवाज में गाने वाले तो कोयल हो गई है ना, कोयल सुरीली आवाज में गाती है, इसी तरह से मोर जो है वो उछल उछल कर अपने नाचता है जब इस मौसम को देखता है। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि कैसे अपने पर फैलाकर जो है मोर नाचता है उस मौसम में। तो वो यहाँ शायर ये कहता है कि हमें दरिया के गंगा के किनारे जाना चाहिए, मन में उमंगें आ गई हैं, बसंत का मौसम आ गया है, और वहाँ पे जाकर हम वहाँ पे खेतों का, खेतों में भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि खेतों में जो चढ़ने वाले जानवर हैं जो भी है, गाय बैल ये सब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये भी बेचारे गर्मियों में जब खेतों पे जाते हैं तो इनको भी हल में लगाया जाता है, और ये भी इतने बड़े बड़े खेतों को जो है वो हल के जरिए जोतते हैं, तो इन पर भी खुशी आ गई है। लफ्ज के जरिए उन्होंने कह दिया, कोई गर्म खेज कोई नगमा रेज, यानी गर्म खेज तेज चलने वाला, यहाँ पे मुराद उछल कूद करने वाले से है, और फिर नगमा रेज, नगमा कहते हैं गीत को, नगमा रेज यानी सुरीली आवाज में गाने वाला, चहचहाने वाला, तो हर तरफ जो है वो उमंगे छा गई हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, कोयल जो है वो सुरीली आवाज

का मौसम आया तो इसमें हर कोई हर एक के दिल पर एक नई उमंग छा गई है। फिर हो गया है जिंदा बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा। फूली हुई है सरसों। तो सरसों का कलर कैसा होता है बच्चों? सरसों का रंग जो होता है वो पीला रंग होता है, फूली हुई है। ऐसे वक्त में सरसों जो है वो बहुत, आपने सरसों के खेत देखे होंगे और नहीं तो तस्वीर भी देखी होगी, तो वो जो है चारों तरफ पीले पीले सरसों के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, भूली हुई है सरसों। तो यहाँ पर शायर ये कह रहा है अब कुछ भी याद नहीं है, कोई भी, कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आदमी उठा लेता है या बहुत ज़्यादा उससे गुजर जाता है, जब उसको जो है सुकून मिलता है, खुशी उस पर छाती है, तो वो चीज़ें भी जो है, वो दुख भी जो है इंसान भूल जाता है। तो वही कहते हैं अब कुछ भी याद नहीं है हमको, अभी हम जो है बहुत खुश हैं। शाद का मतलब होता है खुश होना। तो सरसों राई को कहा जाता है, सरसों जो है ना राई जो होती है। अच्छा, बामुराद, मुराद पाया हुआ, जिसकी मुराद पूरी हो गई है, शाद के मायने खुश। तो यूं ही बामुराद, हमने जो जो गर्मी की वजह से या इस मौसम की हम ख्वाहिश कर रहे थे कि बसंत का मौसम आए ताकि हर चीज़ पर जो है वो खुशी और शादबानी छा जाए, जिसमें परिंद चरिंद चरिंद हों, चढ़ने वाले जानवर हों, ये सब जो हैं सब बहुत खुश हैं। तो अब हमें कुछ भी याद नहीं है, नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, गोया रहेगी बरसों, फूली हुई है सरसों। तो तरह के ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये मौसम ऐसा ही रहेगा और सरसों ऐसी ही फूली रहेगी, तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा है, दिल पे उमंगे छाई हुई हैं। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाए। बसंत का, बसंत हिंदुस्तान की 6 ऋतुओं में से पहली ऋतु का नाम, जो चैत से बैसाख तक रहती है मौसम बहार, वस्त मार्च से आखिर मई तक का मौसम। दरंग देर, बेदरंग बगैर दिल के बिला झिझक, लबे आबेगंग दरियाए गंगा के किनारे। गंग का मतलब होता है गंगा, लबे आबेगंग दरियाए गंगा के किनारे। जल तरंग एक बाजे का नाम, जिसे प्यालों में पानी भरकर तीलियों से बजाया जाता है। हर प्याली में पानी की मकदार अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो तभी तो वो उसको तीलियों के जरिए बजाया जाता है और एक सुरीली आवाज उसमें से निकलती है जल तरंग में से। मन के माने हैं दिल, जी, देखा था मन पे उमंग छाई, माने दिन पे दिल में उमंगे जो है वो, उमंग बोलते हैं जोश को, वलवले को। चरिंदा चढ़ने वाला, गर्म खेज तेज चलने वाला, यहाँ अमराद उछल कूद करने वाला है। नगमा रेज सुरली आवाज में गाने वाला, चहचहाने वाला। सुबुक के मायने होते हैं हल्का, नाजुक, लतीफ। सरसों राई, बामुराद मुराद पाया हुआ, जिसकी मुराद पूरी हो गई हो। शाद, शाद के माने हैं खुश। अब बसंत आने पर लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? गंगा के किनारे इसलिए जाना चाहते हैं ताकि वहां पर जाकर जो है खुशी का इजहार करें, और जो बसंत के मौसम, बसंत की वजह से जो बागों में या गंगा के किनारे पर जो लोग आते हैं तो उनको उस बसंत के मौसम में अच्छा लगता है। गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि बसंत आ गई है, इस वजह से गंगा के किनारे जाना चाहते हैं, क्योंकि अब हर दिल में उमंगें जब छाती हैं तो आदमी चाहता है ना कहीं जाए, तो गंगा के किनारे जाएंगे तो और अच्छा लगेगा वहाँ पर। बसंत में चरिंद परिंद किस हाल में होते हैं? खुश होते हैं, शाद होते हैं और सही रहते हैं। चरिंदे भी परिंदे भी, कोई गाने गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई सुरीली आवाज में अपनी गीत गा रहा है, तो कोई जो है वो उछल कूद कर रहा है, कोई नाच रहा है। तो इसलिए इस मौसम में चरिंद परिंद दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सरसों, कौन सी बात भूली हुई है? सरसों ये बात भूली हुई है कि अब तो बसंत रहेगी, क्योंकि पीली पीली होती है तो वो सोचती है कि

0: भूली हुई सरसों भूली हुई है कि तो मैं ऐसी रहूंगी, ले तो बसंत में सरसों भी जो है वो फूली हुई है चारों तरफ बहुत ज्यादा। शाद के महीने होते हैं खुश के। बसंत का मौसम कब आता है? तो बसंत का मौसम आता है वस्त मार्च से आखिर मई तक का मौसम जो है, मार्च के बीच में 20 से और आखिर मई तक का मौसम जो है ये बसंत का मौसम कहलाता है। अब है मिसरे मुकम्मल कीजिए, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, खाली जगह जो है ना यहाँ पे परिंदा आ जाएगा। गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है, खाली जगह में आ जाएगा सरसों। नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, उमंग, चरिंदा, सुबक, शाद, बामुराद। तो इन लफ्जों को आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। उमंग, तो आज मेरे दिल में बड़ी उमंगे छाई हुई है। अमली काम है, अमली काम में यही कि भाई आप इसके बारे में नज्म, आपको एक तो नज्म को याद कीजिए पहली चीज, तो बहुत आसानी से नज्म याद हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, कोई इसमें कोई मुश्किल इस तरह के लफ्ज नहीं है। और फिर गीत की तरह से गीत बहुत जल्दी याद होता है, 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो नज्म को याद कर लीजिए। याद करने के बाद फिर इस नज्म के बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, इसकी तशरीह कर दीजिए। बसंत, लो फिर बसंत आई, तो बसंत आई तो उसको उन्होंने कैसे कैसे हफिज में उन्होंने हफिज जालंधरी ने कैसे कैसे उसको जो है किन किन लफ्ज़ों में जो है वो बयान किया है, तो उन लफ्ज़ों को फिर भी आप लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं ये नज्म जो है लो फिर बसंत आई नज्म है, हफिज जालंधरी की लिखी हुई है, गीत के अंदाज में लिखी है क्योंकि बार बार मिसरों को दोहराया गया है और लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी जो है वो अच्छा है। नज्म की तशरीह कीजिए या उसका खुलासा लिखिए, खुलासा लिखिए फिर बसंत के मौसम में आपको कैसा लगता है। आपने अगर बसंत के मौसम में जो शायर ने बयान किया है वो तो उन्होंने अपने जज्बात और एहसास बयान कर दिए, कैफियतों को बयान कर दिया अपनी, आप पे क्या कैफियत छाती है जब बसंत के मौसम को देखते हैं। तो बागों में आप जाते हैं आपको कैसा महसूस होता है, दरिया के किनारे जाते हैं तो कैसा लगता है, और खेतों में जाते हैं तो कैसा लगता है। और कभी आपने सरसों फूली हुई देखी है तो सरसों के जो खेत हैं अगर आपने देखे हो, नहीं देखे तो आप इंटरनेट पर या गूगल के जरिए उनको देखिए। और हमने इस किताब में भी जो अपनी जबान किताब है इसमें हमने सरसों के जो खेत है उसकी तस्वीर जो है उसमें दी है। तो इस बसंत नज्म के बारे में अपने ख्यालात का इजहार अपने लफ्जों में कीजिए। बसंत पर आप बसंत के मौसम पे मजमून भी लिख सकते हैं, एक कैसे भी लिख सकते हैं। तो मजमून में लिखिए कि कैसे कौन से हिंदुस्तान में कितने मौसम है और बसंत का मौसम कब से कब तक है, बसंत के मौसम में क्या क्या होता है, क्या हर चीज़ पे जो है वो बाग़ों में बहार आ जाती है, परिंद परिंद सब बहुत खुश होते हैं, इंसान भी खुश होते हैं, उनमें उमंगे वलवले पैदा होते हैं। इसी तरह से नज़्म को गा के पढ़िए, गा के पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसलिए अब कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जैसे हाल है, हाल का जो इमला लिखा जाता है तो हाल बड़ी है से भी लिखा जाता है और लटके हैल से, तो दोनों का मतलब अलग हो जाते हैं। ऐसी फिजा है, हाल मतलब कैफियत और हाल ये हाल कमरा। इसी तरह से फजा और फिजा, जो कहते हैं ना राहत फिजा, फिजा के माने होते हैं अच्छे, और फिजा माहौल, फजा और फिजा माहौल एक तरह बोले जाएंगे लेकिन अलग। अब जैसे आम और आम, एक आम जो है फल है और एक आम आम कॉमन आम, इसलिए सदा, सदा के मायने होते हैं हमेशा के। एक सदा होती है सदा माने सदा, सीन से जो लिखा जाएगा वो सदा माने हमेशा और सदा के माने आवाज के। तो उसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है, आपको पढ़िए समझिए और लिखिए, तीनों काम कीजिए। अब इसमें ये जो है इनको हम जो है हम मानी अल्फाज कहते हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, मतलब जो है इनका अलग अलग होता है, इनके मायने अलग अलग होते हैं। ये हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं। आपको और भी बहुत से अल्फाज ऐसे मिलेंगे जो एक जैसी आवाज वाले होंगे लेकिन उनके मायने अलग अलग होंगे, तो आप इस तरह की कोई फहरिस्त बनाइए और अपने साथ अपने कई जो है अपने साथियों को पेयर में कीजिए या दो लोग मिलके करें तो इस तरह से उनको क्लास में जो है आपस में शेयर भी कीजिए। इसी तरह से आप इसमें गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात यह है कि हफीज जालंधरी ने मनाजिर फितरत और मौसम पर बहुत सी गीत और नज़में लिखी हैं। नज़मों को तरन्नुम से पढ़ा जाए तो एक ख़ास लुत्फ आता है। इस नज़म में लव और आप के साथ लब और आब के साथ में लबे आबे गंग ऐसे लिखा है, लब और आब के साथ इजाफत लगी, इसको इजाफत बोलते हैं, जेर की इजाफत लगी है, इजाफत को कहते हैं जेर, इसमें वो होते जेर होता है, जबर होता है, पेश होता है, तो इसमें इजाफत जेर का इस्तेमाल हुआ है जो दो लफ्जों के दरमियान और पहले लफ्ज के आखिर में लगाया जाता है, जैसे लबे आबे गंग, लबे आबे गंग। गौर कीजिए कि इजाफत के इस्तेमाल के बाद मायने किस तरह अक्स किए जाते हैं, मसलन आबे गंग, गंगा का पानी। तो इस तरह से लो फिर बसंत आई, शायर का जो कहने का अंदाज है वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज है, और क्या कहना चाहिए कि बहुत मौसर लफ्जों में बड़े अच्छे अंदाज से उस कैफियत का इजहार किया है जो बसंत में शायर ने महसूस की। कैफियत उसे कहते हैं जो आप महसूस करते हैं, तो एक कैफियत होती है, एक जज्बा होता है, आपको देख के अच्छा लगा, एक तो वो सो लगेंगे बहुत अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत मंजर है, तो कहने कहने का उसमें लफ्जों का इस्तेमाल जो है बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो नज्म में जैसे नज्म जो है बसंत पर है, तो हमने इस नज्म में जितने भी बसंत से मुतालिक जो लफ्जियात का इस्तेमाल किया है, जो जबान और बयान है, वो बड़ा ही उम्दा है, बहुत ही असर अंगेज है। जब इसको हम पढ़ते हैं तो पूरे बसंत के मौसम की या बसंत का जो एक रुत है, बसंत रुत, उसकी पूरी पूरी अक्कासी हमारे नजरों के सामने आ जाती है जब हम पढ़ते हैं कि चलो बेदरंग लबे आबे गंग, यूं ही शाद शाद यूं ही बामुराद, लो फिर बसंत आई तो फूलों पे रंग लाई, फूलों पे रंग लाई, तो फूलों पे रंग लाई क्या मतलब, अलग अलग तरह के फूल जो है वो खिलने लगे, तो फूलों पे रंग लाना अलग अलग तरह के फूल है, तो ये क्या मतलब, इतना अच्छा अंदाज जो है वो हम शायर का इसके अंदर देख रहे हैं। तो आप लोग भी किसी भी उस पर एक जो है नज्म लिख सकते हैं, गर्मी के मौसम पे लिख सकते हैं, सर्दी के मौसम पे लिख सकते हैं, बरसात के मौसम पे लिख सकते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं उसको आप, वही आपको लफ्जियात उसी तरह की लानी पड़ेंगी। जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में क्या क्या होता है उन्हीं लफ्जों को लीजिए, और जैसे हो सके तो उसको थोड़ा सा नज्म को उसी तरह से उन लफ्जियात को लेकर, ताकि ये पता चले कि ये गर्मी के मौसम की नज्म है, तो गर्मी के लफ्जों को उसको गर्मी में जो चीज़ें होती है, एक तो उसका इस्तेमाल और लफ्जों का इस्तेमाल और पेश करने का अंदाज, अंदाज जो होता है वो पेश करने का कैसा है हमारा, तो उसी पर जो है वो सारे उसका नज्म की जो कहते हैं ना कि जो दिल पे असर करती है शायरी के बारे में कहा जाता है, कि ऐसा अंदाज या इस तरह की जबान व बयान और अंदाज इस तरह से पेश करना कि वो दिलों पर असर करे। लो फिर बसंत आई नज्म में आपने देखा कि बसंत के मौसम, बसंत की रुत के बारे में शायर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही अच्छे लबो लहजे में, जबान बयान में उसको बयान किया। आप भी इस तरह की कई किसी भी मौसम पे नज्म लिख सकते हैं, तो मैं समझती हूँ ये नज्म आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया
1: साथियों। अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे, वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
6: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
1: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूं, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूंगा। कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
1: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
2: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
1: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
1: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से
0: बाय बाय।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। धरती मेरी।

आरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी बूंद से भिंडी तक। तो आइए सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती कड़ी बूंद से।

0: तेरे पापा आ रहे ना, वही ठीक करेंगे तुझे।
1: इधर ओ मम्मी, क्या हो रही आप,
0: इधर
1: क्या है?
2: रुको रुको भाई, ये क्या हो रहा है? अरे विवेक, आज तो हमारे घर में ही सब पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, क्या हो रहा है?
3: पर समझ नहीं आ रहा कि मम्मी ये खाने की प्लेट लेकर की दौड़ लगा रही है।
2: वसुधा क्या हुआ
0: तुमको? आप लोग इस मानव ने ना सुबह से मेरे नाक में दम कर रखा।
2: अरे वसुधा, मानव का तो काम ही है कि इस वसुधा यानी धरती को तंग करना। धरती बेचारी उपकार करे और ये उसे परेशान। तो भाई मानव, बात क्या है? रुक रुक रुक, खड़ा हो यहाँ पे।
4: अरे पापा, जब से आप और विवेक भैया सोसाइटी की मीटिंग में गए हैं, तब से मम्मी और मानव जुटे पड़े हैं।
2: अच्छा,
4: मम्मी बेचारी इसके पीछे पीछे भाग रही है और ये कभी सोफे पर तो कभी बिस्तर पर। मैं तो अभी अभी मदद करने पहुँची कि आप आ गए।
2: अब मानव,
3: मम्मी ऐसी क्या बात हो गई कि आपको पीटी ऊषा बनना पड़ा?
0: बंद करो ये। हंसी की बात नहीं है ये मानव तो रोज जिद्दी कर जिद्दी होता जा रहा है। कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। अब इससे पूछ कर भिंडी और पराठे बनाए मैंने, अब इन लाड साहब को भिंडी नहीं खानी, पराठे नहीं खाने।
2: ओ, तो मानव जी के खाने पर नखरे शुरू हो गए हैं।
1: पर पापा, मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है।
4: अरे भिंडी क्या, इस मानव को तो लौकी, टिंडे, तोरी, काशी फल कुछ भी पसंद नहीं है। हाँ, बाजार का अटरम शटरम जरूर पसंद है।
3: पर मानव, ये हरी सब्जियाँ, फल आदि तो सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद होती हैं।
1: ओहो भैया, मैडम भी यही कहती हैं। पर स्वाद कहाँ से लाओ?
0: स्वाद तो एक थप्पड़ में आ जाएगा मानव।
2: अरे वसुधा वसुधा वसुधा, प्लीज, क्या कर रही हो? अच्छा, तो मैं जो कुछ समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हमारे मानव जी अब चटोरे हो गए हैं और अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के बजाय उनके लिए स्वाद ज्यादा मायने रखता है। पर बेटा मानव, स्वाद तो भिंडी में भी है और साथ में पराठे हो तो भाई अब
4: मजा आ जाए।
2: हमारे लिए भिंडी पराठे लगा दो ना भाई।
0: वो तो मैं लगा ही रही हूँ, पर इस मानव का कुछ तो करो ना, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अब नहीं कहेंगे आप जैसा पिता वैसा पुत्र, कहिए ना। कहाँ से ये सब सीखता है ये लड़का? मानव, कभी देखा है अपने विवेक भैया को? कभी देखा है अपनी सृष्टि दीदी को ऐसे जिद करते हुए? रोज नए शौक, रोज नए शौक।
2: और कभी पापा को देखा है जिद करते हुए?
3: पापा, अगर मानव हमारे साथ इस्लाम अंकल का लेक्चर सुन लेता तो शायद खाने की क्या किसी भी बात पर जिद नहीं करता।
4: अच्छा, ऐसा क्या बताया था इस्लाम अंकल ने?
2: ऐसी बात। अरे बेटा, अभी आने ही वाले हैं वो हमारे यहाँ, उन्हीं से पूछ लेना।
4: हाँ हाँ।
1: पर पापा, इस्लाम अंकल तो समुद्र, वायुमंडल वगैरह की बातें करते हैं, इसका भिंडी से क्या संबंध?
3: अरे मानव, इस भिंडी का क्या तुझसे क्या मुझसे सबसे संबंध है?
1: पर वो कैसे भैया?
3: मानव, वो तो तुझे इस्लाम अंकल ही समझा पाएंगे।
0: हाँ, और उनकी डांटे तो तुझे अच्छी तरह याद भी रहती है। आने दे उन्हें, सारी करतूते बताऊंगी तेरी।
4: लगता है इस्लाम अंकल आ गए।
5: क्या हाल है बेटा सृष्टि?
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते भाई साहब।
4: नमस्ते भाई साहब।
5: भाई साहब, ये मेरे मित्र डॉक्टर राजीव।
6: नमस्ते भाई साहब।
2: नमस्ते
6: नमस्ते।
4: नमस्ते
6: भाभी जी।
4: नमस्ते भाई साहब।
5: ये कृषि वैज्ञानिक हैं और आजकल बदलती जलवायु का विभिन्न पौधों और मिट्टी पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं।
4: आइए भाई साहब, आइए। मैंने बस खाना अभी लगाया ही है। आइए डॉक्टर राजीव, आप भी आइए। आइए
5: ना। और डॉक्टर राजीव, एक मिनट, ये विवेक, ये सृष्टि और ये हमारा मानव।
4: नमस्ते
6: नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो।
2: आ जाए, खाना खाते हैं।

0: खाना तो बहुत ही बढ़िया बना है
1: और लीजिए ना,
0: मजा आ गया।
1: आप भी लीजिए भाई साहब।
0: बस भाई अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पर आप ना थोड़ा इस मानव को समझाइए, घर का खाना तो जैसे इसे खाने को दौड़ता है। हाँ।
0: मानव
2: जी,
0: ये सब क्या है?
2: वो अंकल, हमारे मानव को भिंडी नहीं पसंद।
3: कमाल है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है।
4: अरे भाई, पसंद तो हम सबको है डॉक्टर राजीव, पर हमारे मानव को तो ये सब सब्जियां, दालें, सब पालतू ही लगती हैं।
5: अंकल, मैंने मानव से कहा है कि आप भिंडी की अहमियत अच्छी तरह से बता पाएंगे, तो उसे लगता है कि सागर, महासागर और वायुमंडल की बातें करने वाले वैज्ञानिक का भिंडी से क्या वास्ता।
0: अरे भाई मानव, इन महासागरों वायुमंडल का तो सभी से वास्ता है। अच्छा, मैंने कहा था कि मुझसे हर बार चार रोचक सवाल पूछना। कुछ सवाल सोचे?
2: वो सोच रहा हूँ अंकल, वो
3: चलो तुम सवाल सोचो, तब तक हम सारे महासागर और वायुमंडल का चक्कर भी बताते हैं, और हाँ, भिंडी का भी।
2: इस्लाम अंकल, मानव तो आपसे वैसे भी बहुत डरता है, मम्मी तो बस चाहती है कि आप उसे इन सब्जियों से प्यार करवा दे, बस उनकी सारी परेशानी खत्म।
1: भाई साहब।
0: अरे सृष्टि बेटी, भिंडी की अहमियत समझने के लिए पहले महासागरों, वायुमंडल, भूमि के आपसी संबंधों को तो समझे। हाँ तो मानव
2: जी,
0: पिछली बातें कुछ याद है तुम्हें?
2: हाँ, थोड़ी थोड़ी याद है।
4: इस्लाम भाई, वो ब्रिजमोहन जी और अल्पना जी नहीं आए?
0: वो आज जरा कुछ अन्य काम में व्यस्त हैं, कल आएंगे।
4: अच्छा
3: अच्छा, मानव ये तो तुम शायद जानते ही हो कि सूरज ही हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत है।
2: हाँ अंकल।
0: भाई राजी, ये सब तो पिछली बार इन्होंने जाना समझा था।
3: अच्छा
0: अच्छा, बच्चों ये बताओ, सूरज से हमारी दूरी कितनी है?
5: अंकल, करीब 15 करोड़ किलोमीटर।
3: अरे वाह विवेक।
5: थैंक यू अंकल।
0: हाँ तो भाई, इतनी दूरी से सूरज की कुल ऊर्जा का कुछ अरबवां भाग ही हमारे इस शानदार ग्रह तक पहुंच पाता है।
2: अंकल, इतनी कम ऊर्जा?
3: हाँ सृष्टि बेटी, पर इतनी ऊर्जा भी इसके विभिन्न जीवन को गर्मी और रोशनी देने के लिए पर्याप्त है।
2: अच्छा।
3: और इसके साथ साथ ये ऊर्जा वायुमंडलीय और महासागरीय गतिविधियों को भी निर्धारित करने में भूमिका निभाती है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा द्वारा चालित दो मुख्य प्रणालियां इस धरती पर है, पहली जीवन प्रणाली और दूसरी महासागर वायुमंडलीय प्रणाली, समझे?
3: देखो बेटा, इन दोनों प्रणालियों में जहाँ ऊर्जा का तो बाहरी अंतरिक्ष से आदान प्रदान होता है, परंतु किसी तरह का द्रव्यमान बाहरी अंतरिक्ष से नहीं आता जाता।
5: अच्छा।
3: यानी दोनों ही प्रणालियाँ ऊर्जा को छोड़कर सभी कुछ इस धरती से पाती हैं।
5: अच्छा, पर अंकल, सौर ऊर्जा और महासागर वायुमंडलीय प्रणाली के कारण ही पानी वायुमंडल से महाद्वीपों की यात्रा तय करता है ना?
0: अरे वाह, शाबाश विवेक। और महासागर वायुमंडलीय प्रणाली एवं ठोस भूमि के बीच आपसी रिश्तों के चलते ही चट्टाने टूटती हैं और मिट्टी के लिए सामग्री बनती जाती है।
5: अच्छा।
3: देखो बच्चों, पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में जीवन ने अपनी पहुंच बनाई है, जो वायुमंडलीय गतिविधियों द्वारा, जल संचरण और ऊष्मा के वितरण द्वारा ही संभव हुआ है।
0: समझे कि नहीं आप लोग?
2: जी जी अंकल।
0: अच्छा ये बताओ कि ऊर्जा क्या होती है?
2: ऊर्जा यानी हमारे कार्य करने की क्षमता।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि, ऊर्जा अपने रूप बदलती है, और ऊर्जा अगर एक से दूसरे में ना बदले तो कोई भी गतिविधि ना हो।
2: लेकिन अंकल, ये ऊर्जा के रूप कुछ समझ में नहीं आए।
3: अब देखो मानव, यहाँ एक बिजली से जलने वाला बल्ब है
2: जी।
3: इसमें बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रकाश और ऊष्मा में बदल जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में बनी ऊष्मा अनावश्यक है, पर लगभग ऊर्जा के हर बदलते रूप में ऊष्मा किसी न किसी रूप में निकलती ही है।
0: असल में ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न पैदा होती है न खत्म, वो रूप बदलती है। इसी तरह के कई ऊर्जा के बदलाव महा

0: प्रभाव देखने में आते हैं। पहला, वायुमंडल दो मुख्य जोनों में गर्म होता है। उत्तरी वायुमंडल जिसमें ओजोन परत होती है वो ज्यादा ऊर्जा वाली तरंगें छोकर गर्म हो जाता है, जबकि निचली परत धरती की सतह से टकराकर वापस लौट रही तरंगों को अवशोषित करने के कारण गर्म होता है।
1: अच्छा,
2: समझ रहे ना सृष्टि?
1: हाँ, जी पापा।
3: देखो बच्चों, धरती की सतह से वापस लौटी तरंगों से दोबारा गर्म होने वाली वायुमंडल की निचली परत में अत्यधिक संचरण होता है, जिस कारण वायुमंडल के 10 से 18 किलोमीटर निचली परत में काफी बदलाव होते हैं, जिससे धरती में मौसमी परिवर्तन होते हैं और वायुमंडल एवं सतही चट्टानों में परस्पर गतिविधियां होती हैं, जैसे चट्टानें टूटकर मिट्टी के कणों में बदलती हैं और फिर इन्हें हवा, पानी और बर्फ अलग अलग स्थानों पर ले जाती है।
1: अच्छा।
4: पर अंकल, इन तरंगों का धरती पर दूसरा प्रभाव क्या देखने में आता है?
0: देखो बेटा, दूसरा प्रभाव दिखता है धरती पर मौजूद वनस्पतियों पर, जो इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं।
4: अच्छा।
0: और फिर इन पौधों के द्वारा ये ऊर्जा अलग अलग जीवों में पहुंचती है,
1: खाद्य श्रृंखला के द्वारा, है ना अंकल?
3: शाबाश बेटी।
2: अब जैसा पिता वैसी पुत्री।
3: अच्छा, मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि कैसे ताप में भिन्नता घनत्व और दाब में भिन्नता पैदा करती है।
1: हाँ हाँ अंकल।
3: और घनत्व और दाब की भिन्नता के कारण ही हवा और महासागरों में हलचल प्रवाह गतिविधियां बनती हैं।
0: उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तथा महासागरों का प्रवाह मौसम की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: हाँ राजीव अंकल, इस्लाम अंकल ने बताया तो था कि कैसे महासागरों की सतह पर बहने वाली हवा लहरें तो पैदा करती ही है, साथ साथ ये हवा पानी के तापमान के गुणों को भी अपने में समा लेती है।
3: वाह सृष्टि, तुम्हें तो बिल्कुल सब याद है।
2: तो बहुत याद करवाता हूँ।
3: अब एक सवाल तुमसे पूछ लिया ना तो बगले झांकते फिरोगे।
2: भाई इसीलिए तुमको लाए हैं यहाँ।
3: अच्छा चलो, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये सारी प्रक्रियाएं महाद्वीपों के चारों तरफ और अंदर पानी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इन्हीं के द्वारा महाद्वीपों तक सारी सामग्री के संयुक्त प्रणाली के रूप में आती जाती हैं।
5: पर अंकल, सब कुछ आ गया और चला गया पर भिंडी अभी तक नहीं आई।
3: आएगी मानव बेटे, भिंडी भी आएगी। हाँ, अभी तुम ये तो समझो कि इस पूरी महासागर और वायुमंडलीय व्यवस्था को चलाने के लिए इंजन का काम सूरज की धरती पर पहुंची ऊर्जा ही करती है।
0: देखो बच्चों, वायुमंडल और महासागरों में बहुत ही रोचक फर्क उनके ऊष्मा के हस्तांतरण को लेकर है।
1: अच्छा।
0: महासागरों में जहां सबसे ऊपरी सतह गर्म होती है और ये ताप नीचे की परतों की ओर जाता है, वहीं वायुमंडल में ताप धरती की ओर से लौटी ऊष्मा के कारण नीचे की परत से ऊपर की ओर जाता है।
3: पहले महासागर गर्मी सोखते हैं और उनमें ज्यादा गर्मी सोखने की क्षमता भी होती है। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, जीवाश्म ईंधन के जलाने के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में से 30-50% तो महासागर ही सोख लेते हैं।
1: अच्छा।
4: तो ये महासागर कार्बन के बड़े भंडार होते हैं।
0: हाँ,
3: महासागरों वायुमंडल के आपसी ऊष्मा के लेन देन और गर्म से ठंडे इलाकों की ओर गतिविधियों के कारण ही मौसम बनते हैं। पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। पता है, पूरे वायुमंडल में जितनी ऊष्मा है उतनी तो महासागरों के ऊपरी 10 फीट में ही समाई रहती है।
0: बेटा, महासागरों में विभिन्न जीवों के लिए इस धरती पर करीब 99% जगह उपलब्ध है और 90% महासागर में रहने वाले जीव उन गहराइयों में रहते हैं जहां अभी मानव की पहुंच भी नहीं है।
5: पर अंकल, ये भिंडी कहां रह गई?
3: मानव लाखों करोड़ों वर्षों पहले इस खौलते उबलते ग्रह में पानी की एक बूंद बनी और धीरे धीरे कई बूंदें जो इसी ग्रह में कई रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनी और फिर महासागर बने,
0: और इन्हीं बूंदों ने बरसकर ग्रहों को ठंडा किया, महासागरों में जीवन पनपा।
3: करोड़ों वर्षों से पानी की मात्रा इस ग्रह पर लगभग एक जैसी बनी हुई है। ये पानी वायुमंडल की यात्रा करता हुआ फिर महासागरों पर बरसा

0: और फिर वायुमंडल में वाष्पित हुआ, फिर कभी किसी महाद्वीप पर बरसा।
1: अच्छा।
2: इन्हीं महासागर वायुमंडल की गतिविधियों के चलते मिट्टी बनी, जिसमें कई रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थीं। फिर कभी एक जटिल बीज बना जिसमें पनपने की ताकत थी,
0: और फिर उस बीज पर इन सारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनी एक पानी की बूंद गिरी, जिसने उस सोए बीज को जगाया। वो फला फूला और पौधा बना। शायद तुम्हारी इस भिंडी का पहला पौधा। फिर कई बीज बने
3: और फिर
0: असंख्य भिंडियां।
2: और बेटा क्या पता जो भिंडी तुमने आज खाई उसमें वही करोड़ों वर्षों पहले बने पानी की वही पहली बूंद हो।
3: हाँ।
2: उसमें तपती धरती के ठंडे होने में बिखरी और फैली वही ऊर्जा हो,
0: और आज वही ऊर्जा तुम में होती हुई फिर आने वाली पीढ़ी के लिए शायद कोई नया रूप ले ले। समझे?
4: समझ गया अंकल। ऐसे ही हर चीज भी प्रकृति की करोड़ों वर्ष की मेहनत का नतीजा है।
5: हम इस मेहनत को विश्वास कहकर नकार नहीं सकते।
4: तो समझे महासागर वायुमंडल की प्रणाली का हमसे और भिंडी से रिश्ता? हाँ दीदी।
0: मानव
4: जी,
0: कल मैं तुम्हें महासागरों में बहती नदी के बारे में बताऊंगा।
4: सागर में नदी? वो कैसे अंकल?
0: अरे भाई वो तो कल बताऊंगा। लेकिन आज तुमने फिर कोई सवाल नहीं पूछा।
4: अरे अंकल, आज तो भिंडी के सवाल में ही इतना उलझ गया था कि मैं क्या पूछता, लेकिन कल जरूर पूछूंगा।
0: चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें कल करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
4: और मम्मी कल मैं स्कूल ना भिंडी लेके जाऊंगा।
6: कल सुबह मैं ताजी भिंडी बनाऊंगी अपने बेटे के लिए।
3: चलो भाई, मानव ने प्रकृति की मेहनत की कुछ तो इज्जत की। वसुधा, अब तुम्हारी कोई भी सब्जी बेकार नहीं जाएगी।
6: और इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस्लाम भाई साहब का।
3: भाई
0: भाई, अगर देखिए अगर आपने इतना ही शुक्रिया करना है तो एक कप चाय पिला दीजिए, और गरम गरम पकौड़े भी।
6: अभी खाना खाया आप लोगों ने भाई साहब?

0: लोग जिस धरती पर रह रहे हैं उसका वातावरण जीने लायक बनाए रखने के लिए सबको मिलजुल कर नई तरह से सोचना होगा।
1: हाँ, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी और दुनिया भर में धरती की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में ठीक से समझ सके।
0: बिल्कुल।
1: इस सीरियल की परिकल्पना के बारे में विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर वीबी कांबले क्या कहते हैं, सुनिए।
2: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहां जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप, या कहें कि जीवों की एक प्रजाति, अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साए में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैवमंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूँ कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती है। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800 11 6666 पर संपर्क करें।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारी संबंधित कुछ गलत फहमियाँ हैं या यूँ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
1: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
0: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
1: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
0: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
1: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
0: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो, तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
1: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी महावारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
7: बिल्कुल सोचा है पापा।
6: क्या सोचा है?
7: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
6: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
7: जी पापा।
6: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
7: हाँ पापा बिल्कुल।
8: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
9: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
1: बैचलर सरप्राइज पार्टी अरेंज किए हैं।
2: सरप्राइज पार्टी?
1: हाँ।
2: अरे हमें पता ही नहीं है।
1: अरे वो सब छोड़ो यार, तुम तो तैयार हो।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या क्या हो बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
6: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगी नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
7: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
8: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त भारत।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: कसम है।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट

सकती हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM। पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.

0: ट्वेल्थ पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Beautiful track only on Suno Sharda 90.8 FM. So Shart Manzoor, singers Palak Muchal and Muhammad Irfan. Music and lyrics by Sanjeev Chaturvedi. Label Tips Official. So let's listen to it only on Suno Sharda 90.8 FM. So

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Neil DeMello. Do you take Carol Vaz as your lawfully wedded wife?
6: I do.

0: take Carol Vaz as your lawfully wedded wife?
1: I do.

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, हम हैं आशा और आज हम आपको बताएंगे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे को माँ की त्वचा के संपर्क में रखें। बच्चे को माँ के शरीर से लगाकर गर्मी देना बहुत फायदेमंद होता है। जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध जरूर पिलाएं। नवजात का वजन जरूर कराएं ताकि नवजात के वजन की जानकारी मिल सके। नवजात को जन्म के कम 7 दिन बाद नहलाएं। शिशु को हमेशा साफ कपड़े से ही पोछें। नाभि नाल को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए। नाभि नाल पर तेल, पाउडर, राख, गोबर, हल्दी इत्यादि बिल्कुल न लगाएं। इससे इन्फेक्शन लगने से शिशु बीमार पड़ सकता है। बच्चे को सूखे एवं स्वच्छ कपड़े में लपेट कर रखें। माँ किसी कारण से बच्चे को अगर सीने से लगाकर ना रख सके तो घर का कोई भी और सदस्य उसको सीने से लगा सकता है। बच्चे को रात दिन 24 घंटे में 8 से 10 बार दूध पिलाएं। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दें। माँ के दूध में सभी पौष्टिक तत्व मौजूद रहते हैं। बच्चे के लिए माँ का दूध ही परिपूर्ण आहार है। इससे पोषण संबंधी सभी जरूरतें पूरी होती हैं और बच्चा बीमारियों और संक्रमण से बचा रहता है। माँ और परिवार के सदस्य शिशु को छूने से पहले हर बार अपने हाथ साबुन और पानी से अवश्य धोएं। याद रहे, बच्चे का स्वास्थ्य और विकास आपके हाथों में है। अगर जो कि थोड़ी सी भी लापरवाही बढ़ सकती है बच्चे के स्वास्थ्य पर भारी, क्योंकि सही तरीके से की गई सही देखभाल से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा, गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
0: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.
6: Vasudhaiva.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी,
1: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी

0: जमा देखी नी, ओके राके तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
1: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ जा मच्छर बन पर भारी।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजिली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।